0: वैसे तो आशा भोसले की खास म्यूजिकल करियर ओपी नैयर के साथ हुआ, जिसे इंडियन एंटरटेनमेंट के अजीत आपको बताते हैं।
1: पता है कि 50 और 60 के दशक में ओपी नैयर ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में आशा भोसले को ही मुख्य गायिका बनाया, और यही वजह थी कि इनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को दर्जनों अमर गीत दिए।
2: 1959 के आसपास उनका रिश्ता रोमांटिक हो गया। ओपी नैयर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी सरोज अरोड़ा से 1951 में शादी हुई थी। 3 बच्चे थे, लेकिन आशा के साथ वो खुलकर घूमते थे, कैडिलैक कार में, पार्टीज में। इंडस्ट्री में ये ओपन सीक्रेट था। ओपी खुद एक इंटरव्यू में कह चुके थे कि आशा उनकी ग्रैंड अमूर थी। आशा के उन्होंने 300 से ज्यादा गाने दिए, ज्यादातर हिट। ओपी नैयर की विरासत आज भी जीवित है, वो रिदम, वो एनर्जी।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ।

कुंज जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ कुंज जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे।

यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। संगीत के झनकार में आज सुबह 2 आवर स्पेशल ऑन आशा भोसले है, फीस्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट है फ्रॉम हरसेल्फ एंड अदर इंटरव्यूज़।

0: As they say, all good things come to an end. Asha Bhosle and Open Ear, Parted Companies. वास्तव में वी वोंट गो इनटू रीजंस व्हाई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन वन ऑफ द पॉपुलर थियरीज आर एज अजीत एक्सप्लेन्स ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट.
1: कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं आशा ने ओपी को छोड़ दिया क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती थी. बाद में आरडी बर्मन से शादी 1980 में. कुछ कहते हैं ओपी ने आशा को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की. एक थ्योरी ये भी कि लता मंगेशकर ने ओपी से मिलकर बहन आशा को समझाया. ओपी ने बाद में कहा, आशा ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने खुद फैसला किया. लेकिन ज्यादातर सोर्स कहते हैं कि आशा ने वॉकआउट किया. ओपी ने आशा को स्टार बनाया लेकिन प्यार में उन्हें बहुत दर्द मिला. आशा आज भी ओपी का नाम कम लेती है, शायद इसीलिए कि वो एसडी बर्मन को ज्यादा क्रेडिट देती है. लेकिन फैक्ट ये है, बिना ओपी नैयर के आशा भोसले का वो जादुई दौर नहीं आता और बिना आशा के ओपी का वो पीक पीरियड नहीं होता. दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीट किया लेकिन प्यार ने आखिर में दर्द दिया.

0: आपने जम।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सिंह, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

फिर 1966 में आरडी बर्मन नाम के एक नौजवान संगीतकार ने मुझे तीसरी मंजिल के लिए आजा आजा गाना दिया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत वेस्टर्न है। मैंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और उस गाने ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।

आरडी बर्मन, दुनिया उन्हें पंचम कहती थी, मैं उन्हें अपना घर कहती थी। हमने साथ मिलकर पहले संगीत बनाया, फिर एक जिंदगी। 1980 में वो मेरे शौहर बने। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे पूरी तरह प्यार किया, सिर्फ मेरी आवाज को नहीं बल्कि उसके पीछे की औरत को। साथ मिलकर हमने बॉलीवुड के कुछ सबसे यादगार गाने बनाए।

0: 2012 में मेरी बेटी वर्षा को खोया, 2015 में बेटे हेमंत को, वो सब चुपचाप सीने में लिए गाती रही। 12,000 से ज्यादा गाने, 20 से अधिक भाषाएं, 8 दशक। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मुझे संगीत इतिहास की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई कलाकार घोषित किया। भारत ने मुझे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से नवाजा। 90 साल की उम्र में मैं दुबई में एक मंच पर खड़ी थी, गाती हुई, नाचती हुई, और मैंने दुनिया को बताया मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की आखिरी मुगल हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने इस पर राज किया, बल्कि इसलिए कि इसने मुझ पर जितने भी तूफान फेंके, मैं हर बार खड़ी रही और गाती रही।
1: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले पर एक विशेष प्रोग्राम, आशा भोसले की जुबानी, उनकी कहानी, और उसके साथ ही साथ अजीत खास रिपोर्ट लेकर। मैं हूँ आपका साथी फिरोज खान, और जैसे आप जानते हैं शी कैरीड ऑन अंटिल 12th ऑफ अप्रैल 2026।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: आपने बना लिया है गहरा संबंध सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा। इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनकार।
3: यहाँ एक बार फिर आप सबका स्वागत हो संगीत की झनकार पर। वापस आकर आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, जारी रखते हैं आशा भोसले पर एक विशेष प्रोग्राम। आशा भोसले से गाए हुए चुने हुए संगीत आपके लिए और बीच बीच में पंचुएटेड बाय स्पेशल इंटरव्यूज बाय आशा भोसले, जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि वो टाइप ऑफ पर्सन आशा वास। तो आपके साथ फिरोज खान संगीत की झनकार पर आज सुबह एक खास प्रोग्राम आशा भोसले पर।
4: 80 साल से ज्यादा आप गा रही हैं
5: जी।
4: यू विल बी 91 एंड यू स्टिल रॉक। कैसे करती हैं ये सब? हाउ डू यू लुक सो यंग एंड हैपनिंग?
5: मैं उसके लिए कुछ करती नहीं हूँ कि यंग दिखना, ऐसा कुछ मतलब जैसे होता है आजकल वैसा कुछ नहीं करती। लेकिन जिसका मन खुश होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो हर चीज को अच्छा देखता है। मैं किसी चीज को देखती हूँ ना, तो उसमें से अच्छा क्या है उसको ही देखती हूँ। गाने सुनने में बैठती हूँ तो अगर गाना अच्छा लगे तो मैं सुनती हूँ, नहीं तो नहीं सुनती हूँ। क्योंकि जो अच्छी ना लगे चीज वो अपने मन को दुखी करती है, तो वो करना ही नहीं चाहिए। जो हम लिखा के लाए हैं वो हमसे कोई भी कभी भी ले सकता। अपना विश्वास जो होता है भगवान के ऊपर, वो अगर दृढ़ है तो मेरा ख्याल है इंसान हमेशा अच्छा रहता है।

0: वो बचपन से मुझे एक आदत थी कि फिल्म देखना, गाना सुनना और उसकी नकल करना, उन चीजों की, जैसे कोई सिंगर गाए उसका आवाज वैसे निकालने की कोशिश करना, ये सब सबको ही मतलब घर में था, वैसे मुझे भी था। आपको बताती हूँ, एक पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर में कैरमन मरांडा करके
1: जी
0: एक सिंगर थी, वो अजब कपड़े पहनती थी और अजब टोपी में कुछ फल वल लगे होते थे। तो हमारा घर तो क्लासिकल गाने वालों का, लेकिन मैं जब ये गाना घर में आके चिल्ला चिल्ला के गाती थी तो माँ को लगता था ये पता नहीं कहाँ से भूत के तरह कर रही है, और माँ मारती थी फिर। तो वो गाना मैं आपको बताती हूँ, वो गाना बाद में मुझे कैसे काम आया वो भी बताती हूँ। ये मैं आके घर में गाऊं और गालियां सुनूं। इसके बाद बहुत सालों बाद मुझे श्री रामचंद्र जी का गाना मिला, तो वो मैं जितना भी गाती थी वो उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे दिमाग में वो औरत आई और मैंने टेक के वक्त गाया, मिस्टर जॉन बाबा खान या लाला रोशन दान, ऐसे किया। और वो
1: जी
0: गाना इतना सबको अच्छा लगा कि कहने लगे ये कैसे तुमने किया। तो मैंने तब बताया नहीं कि मैंने कैरमन मिरांडा को कॉपी किया। तो इसी तरह अपने गाने को मैंने हर बार चेंज किया, वॉइस को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना। अब ये देखिए कि एक जमाना आया था जिसमें कवालियां चलती थी, तो ये कवाली बहुत चली मेरी, निगाहें
1: जी
0: मिलाने को जी जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी

है। तो उसके बाद ये गाना आया, तो साथ में उससे पहले वो भी आ गया कि जमाना आया था ये नमी नदी का है डाय डमिनिका माँ कना कना का चिका बिकारी का इनमीनरी कड़ी कड़े डाय डमिनी का मकना का मकना का चिका बिकारोलारी का रम पम पोश रम पम पोश है रम पम पोश रम पम पोश इनमीनरी का डाय डमिनी का मकना कना का चिका बिकारी का

संगीत के चंगापुर में हूँ आपका साथ फिरोज खान और इस सेगमेंट में आप सुन रहे हैं आशा भोसले से गाए हुए कुछ चुने हुए संगीत खास प्रोग्राम स्मोक्स बार ऑफ हिट्स ऑफ आशा भोसले।

0: सारे गायक गायिकाएं आ रही हैं
1: जी,
0: और उनके आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें वो कशिश नहीं है जो आप में और लता जी में हमें देखने को मिलती है, तो इसका क्या कारण लगता है?
1: वो आपका प्यार होगा मेरा कहना।
0: प्यार तो नहीं, प्यार तो है, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ चीज है।
2: ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो कि एक कलाकार को सफल बनाने में?
1: देखिए, पहले तो मेहनत, अपने आवाज को ठीक रखना। आवाज ठीक रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पहले तो सुबह उठ के रियाज करना पड़ता है। सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है ना बच्चों को, वो छोड़ के सुबह उठ के रियाज करना। जितनी सुबह जल्दी आप बैठेंगे उतनी आपकी आवाज पक्की होगी। जैसे पढ़ाई में भी देखिए, आप परीक्षा से पहले पढ़ने बैठते हैं कि नहीं सुबह उठ के 4 बजे, इसी तरह अगर आवाज को आप सुबह जल्दी लगाएंगे तो आवाज आपकी अच्छी होगी। दूसरी बात, आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा तो मतलब ध्यान देना पड़ेगा, और मेहनत जो सिखा रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर उसको बहुत ध्यान से सुनिए। वो क्या कहना चाहता है, उसने किस भाव से गाना बनाया, उसको पहले आत्मसात कीजिए, फिर सोचिए कौन गा रहा है इसको, कौन से आर्टिस्ट गा रही है, ये भी समझ लीजिए। इस तरह हर चीज़ को देखते हुए जब आप जाएंगे तो आप अपने आप को फिर महसूस कीजिए कि आप वही आर्टिस्ट हैं। जैसे मैं महसूस करती थी कि मैं हेलन हूँ। तो समझने में क्या जाता है ना। तो मैं सोचती थी कि हाँ चलो मैं हेलन हूँ, या मैं नरगिस हूँ, या कोई भी आर्टिस्ट, मीन मधुबाला हूँ। तो ये सोच के जब आप गाएंगे कि वो मैं हूँ और वो गाएंगे, तो अपने आप वो गाना वैसा उतरने लगता है जैसे कि वो फिल्म पे करते हैं।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

कुंज जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ कुंज जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे।

0: जैसे कि आपने बोला कि रियाज काफी जरूरी है
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम देखते हैं कि रियाज से कई बार आवाज में वो भारीपन आ जाता है जो कि जिससे कि सब तरह का गाना मतलब इतना आसान नहीं रहता।
1: रियाज भी तो
0: मतलब रियाज कितना करना चाहिए ये भी तो।
1: अगर आपने रियाज सही किया तो आप 8 घंटे भी अगर रियाज करेंगी सही करेंगी तो अच्छा रहेगा, और गलत रियाज अगर आप आधा घंटा भी करेंगे तो आवाज चेंज हो जाएगी। और ये समझना उनके गुरु का मतलब आपके जो सिखाने वाले गुरु हैं उनका काम है कि ये आवाज किस किस्म का है, इसको कैसे सिखाना है, इस आवाज को कैसे ठीक करना है।
0: थोड़ा सा आप बताएंगे कि रियाज का प्रक्रिया।
1: मैं बताती हूँ आपको, सबसे अच्छा होता है सुबह का राग है बिलावल, शुद्ध सुर है सारे गम पदनिसा सानिधप मगरिसा। इसको अगर आप अच्छी तरह सा को पहले पकड़ के बैठिए, हम लोग तो बहुत करते थे, आप 10 मिनट भी अगर बैठे आप तो थकान आ जाती है, सही सा लगाना, फिर मंद्र सप्तक नीचे नीचे जाना, आवाज़ को पक्का करना, फिर ऊपर जाना, आप जहाँ जा सकते हैं पंचम तक जाइए। ये आवाज़ का सूर्योदय से पहले आपको मंद्र सुर लगाने हैं, और जैसे सूरज निकलने लगता है फिर आप ऊपर जाके ताने वाने लेना शुरू कर सकते हैं, इससे आवाज़ अच्छी बनती है। अब देखिए जैसे मैं अभी राग नहीं लेते, ऐसे मैं बताती हूँ कि गाना है

0: तो ये नाभि से हम गा रहे हैं, तो एकदम यहाँ से सुर निकल रहे हैं। लेकिन अगर क्लासिकल में अगर बैठे हैं लड़की और वो गाना शुरू करे, तो वो क्या क्लासिकल आते वो ऐसा सोच लेते कि हमको कुछ बहुत कुछ करना है, तो शुरू ये भी करना है सीधा जा रही हूँ मैं। अब ये भी तरीका है, इसमें आवाज खराब हो जाए। अगर ये तरीके से लड़की अगर गाना सीख रही है, लड़का सीख रहा है, तो वो लाइट गाने के लिए ठीक नहीं रहता। फिर लोग क्या कहते हैं कि क्लासिकल के वजह से आवाज बदल गई, पर क्लासिकल सही नहीं गाया इसलिए बदले, वो नहीं ये समझता।
1: नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अपना करियर लाइट म्यूजिक का बनाना है वो अलग किस्म का रियाज करे, और जिसको शास्त्रीय संगीत।
0: नहीं जी, नहीं ऐसी बात, मेरा ख्याल है कि भगवान ने जो चीज दी है जैसी है वैसी आप पेश करें
1: जी,
0: वो अच्छा है। जैसे ये यहाँ से सुर आया, सुर आया, ये यहाँ से आया, तो यहाँ से ना गा के अगर आप सीधा गा रहे हैं तो आपके ओरिजिनल वॉइस जो है वही आएगी, उसी में आप काम कीजिए तो बदलेगी नहीं आवाज। लेकिन आपने अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा कर किया।

0: इन सब चीजों में एक जो कॉमन चीज जो हम पाते हैं वो ये है कि आप मूड को तो आत्मसात करती ही हैं, साथ साथ आप शब्दों की व्याख्या भी गाने के साथ साथ करती चलती हैं, जिनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस होती है कि उन शब्दों को उतना ही वजन दिया जाए जितना उनकी जरूरत है, किस शब्द को ज्यादा दिया जाए। ये आप के अंदर एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है या इसके ऊपर भी मेहनत करनी पड़ती है?
1: नहीं, देखिए जन्म से कोई सीख के तो आता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो जब हमने जब गाना शुरू किया था तब मुझे तो हिंदी बात करनी भी नहीं आती थी, कि आप कैसे हैं इतना भी नहीं हम बोल पाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज इतनी हिंदी हमारे जीवन में घुल गई है कि मराठी में कम बोलती हूँ मैं, घर में भी हिंदी शुरू हो जाती है। तो जब गाना शुरू किया तो म्यूजिक डायरेक्टर जो कह रहे हैं वो किस तरह मतलब गाने में बोल कह रहे हैं, उसको गाने के साथ साथ उनकी ज़बान को भी हमें सीखना पड़ता था। जो नहीं सीखते हैं वो बहुत गलतियां करते हैं, हमने वो बहुत ध्यान से सुना है। एक बताती हूँ मैं आपको, पंजाबी तो हमारी ज़बान नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो पंजाबी का पहला गाना आया 47-48 में, पहला पिक्चर था लच्छी और गाना था कदी चुके पुले बिब्बा साड़ी गली लंग तो, अभी याद है मेरे बहुत। तो मैं सीधा गाती थी कदी पुले चुके बिब्बा साड़ी गली, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इनका वजन क्या है। तो सब लोग बोलते थे कि ये जमता नहीं है, फिर मुझे बड़ा अपमान सा लगा कि ये क्या बात है। तो वो अपने आपस में बात करते थे, जैसे शार्दुल क्वात्रा बात कर रहा है तो कहता है ओ पाइया कितने जानता है, तो मैंने बोला पाइया क्यों बोल रहा है, ये भैया क्यों नहीं बोल रहा है, ये उनकी जबान क्यों, किस बात पे वो जोर दे के बात कर रहे हैं। तो वो मैंने सुनना शुरू किया, वो सुनते सुनते पता लगा कि हाँ इनकी जबान में इसको बहुत महत्व है। तो कदी चुके पुले पुले, भूले के जगह पुले बिब्बा साड़ी गली लंग लंग तू, तो ऐसे से कुंड कुंड तो हमने कभी नहीं सुना था, वही सुनने की बात है। जैसे एन गैन ये तो बचपन से तो नहीं सीखा था हमने, जब हम नए नए आए तो उर्दू जब सामने कोई बोले तो सोचते थे कि ये अलग है कुछ, तो वो हमने सीखा कि कहाँ काफ बोलना है कहाँ गैन बोलना है, ये सब बाद में हमने सीखा। और उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए ये भी सीखा, बाकायदा हमने बिठा के गुरु से सीखा कि हमें बताइए कैसे हैं इस तरह।

आपके लिए संगीत की जगह पर एक खास प्रोग्राम आशा भोसले पर। आज 2 hours ऑफ स्मोक इज बॉर्ड स्पेशल म्यूजिक बाय आशा भोसले। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और जाते जाते आपके लिए आखिर में छोड़ रहा हूं माई फेवरेट दी फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम आशा भोसले, जिसको हम अक्सर लूप में डालकर अपने गाड़ी में सुनते हैं। तो आपके लिए आशा भोसले से यह है मेरी पसंद। अगले रविवार तक के लिए आप सब खुश रहिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा तबीयत ठीक हो जाए।

0: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: है रेडियो 79.1, जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

Good afternoon and welcome back to Radio Brizwani. नमस्कार, राम राम, केम छो, सस्तिकाल, सलाम अलैकुम, और बुला कहते हुए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। और एक बार फिर गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिजवानी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। शाम का सफर में ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। मैं हूँ रोहित सिंह। ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफर में। हर बात का वक्त मुकर्रर है, आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे। खूबसूरत सा कार्यक्रम लाइव अपने स्टूडियो से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साथ में जुड़ जाइएगा हमारे साथ 2 घंटे के लिए रंग रंग कार्यक्रम में। रेडियो ब्रिजवानी पर रोहित सिंह का साथ है, याद कीजिएगा। और हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701। कार्यक्रम आपके लिए हम लाइव अपने स्टूडियो से पेश कर रहे हैं। रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खूबसूरत कार्यक्रम एक ही रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिजवानी पर आप सुनते हैं। देश विदेश में आप है, इंटरस्टेट में आप है, ये ब्रिस्बेन में खुद है, और जहां तक इस ब्रह्मांड में हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। 2 घंटे का रंग रंग कार्यक्रम रोहित सिंह के साथ आप सुन सकेंगे 2:30 बजे तक। याद कीजिएगा, लॉन्ग वीकेंड, आखिरी लॉन्ग वीकेंड है साल के लिए। कल लेबर डे है तो कल पब्लिक हॉलीडे है। 3 रोज का छुट्टी है, सैटरडे, संडे और मंडे। फिर भी हमारे कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण कुछ इस प्रकार से है। स्थानीय कलाकार कुछ आपके लिए पेश करेंगे, मिले जुले संगीत उसके बाद, और फिर ओल्ड इज गोल्ड, भूले बिसरे नगमों का खजाना, पुरानी यादें रोहित सिंह के साथ आप सभी आज सुनेंगे। याद कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ ठीक 2 घंटे तक, 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। साथ जरूर दीजिएगा। फोन नंबर 3279-1701, या आप हमें हमारा मोबाइल जो है उस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। याद कीजिए दोस्त साथियों, मैं रोहित सिंह खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर रेडियो ब्रिजवानी पर आपका साथ दूंगा 2 घंटे के लिए।

और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। अगर आपने अपना रेडियो भी खोला है, आपका हमारा साथ है ठीक है, इसी लेकर 2:30 बजे तक खूब से कार्यक्रम रोहित सिंह के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर आपका हमारा साथ है। और चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आपके लिए पेश करते हैं स्थानीय कलाकार। और स्थानीय कलाकार में आज सबसे पहले कलाकार है फिजी के एडी विल्सन।

रोनल जैक की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सनी कलाकार आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं हूँ रोहित सिंह, वही रेडियो प्रिज़वानी पर।

एक बार फिर रोनल जाए और सरिता सिंह मेरे ख्याल से है साथ में, प्लीज डोंट कोट मी, ये शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर भी सनी कलाकार रोसे के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

याद कीजिएगा। और इसी के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है। और स्टडी के घड़ी के अनुसार ठीक पांच मिनट रह चुका है एक बजने में, खूब से संगीत सुरेश वाडकर की आवाज में।

बहुत ही खूबसूरत गीत एक बार फिर सुरेश वाडकर और स्वर्गीय आशा भोसले की आवाज में। और आज ऑकलैंड न्यूजीलैंड में बहुत से लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। इसमें है शिवानी गंगा और गीता प्रसाद, साथ में है शिवानी लक्ष्मण प्रसाद। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ये नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं हूँ रोहित सिंह रेडियो ब्रिजवानी पर।

और इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं शिमांशपति रवि प्रताप। आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत संगीत हमारी ओर से, याद कीजिएगा थोड़ी देर में हम आपके लिए पेश करेंगे भूले बिसरे नगमा का खजाना, पुरानी यादें साथ दीजिएगा।

खूबसूरत और इस गीत में एक बार फिर फरमाइश करने वाले हैं श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद, साथ में हैं श्रीमान श्रीमती लक्ष्मण प्रसाद। आप सभी के लिए उकल में आप एक कार्यक्रम सुन रहे, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ यह नगमा आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुरेश वाडकर और स्वर्गीय लता मंगेशकर की आवाज में

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

और एक बार फिर याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है रेडियो ब्रिज वाणी पर, ठीक है अभी से लेकर 2:30 बजे तक। चलते हैं अब हम आपके लिए पेश करते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यानी भूले बिसरे नगमों का खजाना पुरानी यादें। खूबसूरत से गीत हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए अपने स्टूडियोज में, और जितने भी लोग पुराने गीत पसंद करते हैं आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत से कार्यक्रम हम लेकर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम आरंभ करते हैं तलत महमूद की आवाज में अनुक डैनियल्स के संगीत पर, खूबसूरत सा तलत महमूद।

जी हाँ दोस्तों, साथियों, अभी आप सभी सुन रहे थे तलत महमूद की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत एनोक डेनियल से संगीत पर। और दोस्तों साथियों, इस हफ्ता हम श्रीमती एंजेला पूरन जी से बातें कर रहे थे और उन्होंने मैंने उससे कहा कि आपको पुराने गीत बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पुराने गीत बहुत पसंद हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, आज रविवार के दिन हम आपके लिए पेश करते हैं पुराने गीत। और एंजेला जी ने कहा से अपना प्रोग्राम का नाम ओल्ड इज़ गोल्ड रखना, तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, भूले बिसरे नगमों का खजाना, पुरानी यादें आपके लिए पेश कर रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी से। और चलते हैं इस गीत में, याद करते हैं श्रीमान श्रीमती जतीश और एंजेला पूरन को।

इस गीत में याद करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के श्रीमान श्रीमती राव जी, आप एक कार्यक्रम सुन रहे हैं। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं रोई सिंह, रेडियो ब्रिजवानी पर एनोक डेनियल्स के संगीत पर स्वर्गीय तलत महमूद की आवाज में।

0: ब्रिजवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिजवानी, दिस इज आलिया।
4: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिजवानी, दिस इज शाहरुख खान।
6: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
7: Celebrate Mom this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mom this Mother's Day. Terms and conditions apply.
8: Bigger, better deal.
9: भोले ब्रिज से नगमों का खजाना, पुरानी यादें रोहित सिंह के साथ साथ दीजिएगा।

खूब सुन सके हर रोज के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफर साथ दीजिएगा। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: और आज बहुत से लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत से लोग फोन भी कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं मुझे, साथ में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आज कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिवांशपती अनिल सिंह, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ये नगमा आपको और भाभी जी को बहुत अच्छा लगेगा। लता मंगेशकर और खॉरस की आवाज में भूले बिसरे नगमों का खजाना, पुरानी यादें।

हमारा साथ जरूर दीजिएगा। ठीक ढाई बजे तक और चलते हैं एक बार फिर तलत महमूद की आवाज में। बहुत ही खूबसूरत गीत हम पेश करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं ये नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वन ऑफ माई फेवरेट एंड बहुत ही खूबसूरत

खूबसूरत से गीत रेडियो ब्रिजवानी पर स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5 मिनट होना चाहते हैं 2:20 के साथ है अभी से लेकर 2:30 बजे तक साथ जरूर दीजिएगा।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: याद कीजिएगा, आप सभी सुन रहे भोले भी से नगमों का खजाना, पुरानी यादें, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक, अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है, जरूर से साथ दीजिएगा।

एक बार फिर आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में पुरानी यादें हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक साथ दीजिएगा। मैं हूँ सिंह, जरूर से साथ दीजिएगा।

हाँ दोस्तों, साथी इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच गए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग और कुछ सुनना चाहते हैं, फिर भी सू आ गई है स्टूडियो में और उनका साथ आप दीजिएगा जरूर से 5 बजे तक। खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर उपस्थित होगी हमारे स्टूडियोज में। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार के शाम ठीक 12:30 बजे से होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, रुक्षा थोड़ा मैं नमस्ते, हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून, द बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड ब्यूटीफुल वीक अहेड, साथ में शब खैर और विनाक।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

जो लोग भी आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। आज आपके साथ सो है शाम का सफर, अभी आपके साथ ये रोहित सिंह ने चलते हैं। आज थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा समय है, कम समय है, वैसे हमारा आपका साथ होता है संडेस को 5 o'clock तक, लेकिन आज किसी कारण हमारा आपका साथ होगा ठीक 4 बजे तक।

है, जन्मदिन है, कोई भी खुशी आपके पास हो, तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी सी बधाइयां। मैं कहना चाहते हैं आपसे, फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुरा के गम भुलाना है जिंदगी। जीत कर कोई तो खुश हुआ जिंदगी में, तो हार कर मानना है जिंदगी। हैप्पी संडे एवरीवन।

दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सा प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुए हैं। ऑलरेडी हमारे पास कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ गई है। देखिए हम कहाँ तक जा सकते हैं आज।

रही है बहुत समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट ऑलरेडी हो गई है। आज का पहला गीत शुरुआत करते हैं बहुत प्यारे गीत से आप सभी के लिए जो आज रेडियो वृषवाणी सुन रहे हैं। रेडियो वृषवाणी आप तक पहुंचाया जा रहा है हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। चलते हैं आज का जो पहला गीत है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म मदर इंडिया से मैंने लिया।

0: रफीकी साहब की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुना दोस्तों। 3:45 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपका स्वागत है रेडियो विश्वानी आईएम पर। और आज आपके साथ सो चलते देखे बहुत से लोग हमारे साथ शामिल होंगे हैं, इसीलिए हम बहुत समय नहीं लेते हुए आज का फरमाइशी प्रोग्राम हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही जल्दी आफ्टर द एडवर्टीजमेंट। तो चलते हमारे स्पॉन्सर्स की खबर सुनते हैं।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। दोस्तों 3:45 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर। और जो कल रात का शो हुआ, इसके लिए लोगों की मांग है कि हम उस शो के बारे में, अगर आप नहीं गए हैं तो इसके बारे में हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। इट वॉज माइंड ब्लोइंग शो, इतने अच्छे जिन लोगों जो लोगों को हमने वहां पर मिला, सभी की मुंह पर एक ही बात थी कि दे केम टू सी सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी सॉन्ग्स, क्योंकि मोहम्मद रफी से उन्हें बहुत प्यार था। और बात कुछ ऐसी है कि जितने भी गीत थे मोहम्मद रफी सॉन्ग्स वॉज ब्यूटिफुली डन। और हमारे पास कुछ जावेद अली सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आई है, जो जावेद अली की आवाज में मोहम्मद रफी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जो कल रात को उन्होंने गाया, इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे। तो अगर आपने मिस कर दी है तो आई वुड लाइक टू फ्रेशन अप दैट शो कुछ सॉन्ग्स। तो चलते हैं, सबसे पहले फरमाइश हमारे पास है एक बहुत प्यारे से कृष्णा भजन से। और आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मेनली वेस्ट में लक्ष्मी, आपके लिए बहुत प्यारा सा कृष्णा भजन से शुरुआत करते हैं आज की फरमाइश।

0: और इस कृष्ण भजन में आज सबसे पहले हमारे साथ शामिल हो गए थी मेनली वॉइस लक्ष्मी. आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी, आपकी अपनी पहचान.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
0: चलते हैं दोस्तों अगली फरमाइश की ओर. हम बढ़ते हैं मॉर्निंग साइड की ओर. हम चलते हैं मॉर्निंग साइड से. हमारे साथ सफर पर है विनय और प्रमिला. हैव अ नाइस आफ्टरनून संडे एंड हैव अ नाइस ड्राइव. आप दोनों की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत.

ब्यूटीफुल सॉन्ग लता और रफी की आवाज में आपने सुना। इस गीत को फरमाइश करने वाले थे विनय और प्रेमिला फ्रॉम मॉर्निंग साइड, जो इस वक्त हमारे साथ सफर पर हैं। चलते हैं, देखिए अगला फरमाइश है हमारे पास तलत महमूद का गीत का, जिसे फरमाइश किया है ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।

ललित महमूद की आवाज़ का सॉन्ग की फरमाइश किया था ललिता गौतम, जो हमें सुन रहे सैक्रामेंटो यूएसए में। चलते हैं अगला गीत जो हमारे पास है, जावेद अली की आवाज़ में इस गीत को आप सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने कल रात रफी साहब के गीत को गाया था। कुछ लोग जो है हमें मांग किया है कि जावेद अली का गीत सुनना चाहते हैं जो रफ़ी के गीतों को गाया है, शेरुल एंड अनवर फ्रॉम आर्च ऑफ फील। और इस गीत को कल जावेद अली ने बहुत खूबसूरती से गाया है, तो सुनते हैं कौन सा गीत है।

0: चौधरी का चांद आपने सुना दोस्तों, रफी का गीत है, लेकिन आज आप इस गीत को सुना जावेद अली की आवाज में। और इस गीत को उन्होंने भी कल रात को जो फंक्शन हुआ था उसमें बहुत खूबसूरती से गाया था। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: और हम चलते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो USA में, जहां पर हमें सुन रहे हैं कामनी नारायण। और साथ में आज हमारे साथ जुड़ी है उनकी बहन वहां सिडनी में, आशा चंद। आपका स्वागत है, पहली बार आप रेडियो ब्रिजवानी से जुड़ी है। और रेडियो ब्रिजवानी आप 24/7 ट्यून इन कर सकते हैं। आज आपके साथ है सू संडे प्रोग्राम पर, आपका हमारा साथ होता है सफर पर। तो चलते हैं कामनी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो USA, और साथ है और हाँ विजेन भी है, कामनी विजेन, और साथ में उनकी बहन सिडनी से हमारा प्रोग्राम सुने आशा चंद। आप सभी के लिए आपकी फरमाइश पर पेश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज का गजल।

0: आपने सुना जगजीत सिंह चित्रा सिंह का ब्यूटीफुल गजल, और हमारे पास फरमाइश आई थी इसके लिए वहाँ सेक्रामेंटो यूएसए से विजयनो कामनी नारायण की ओर से, और साथ में हमारा प्रोग्राम सुन रही है कामनी की सिस्टर वहाँ सिडनी में आशा जी। आशा जी आपका स्वागत है रेडियो विजवानी पर।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 18 मिनट हो गए हैं 3:00 ए रेडियो विस्पानी आईएम शाम का सफर पर आपके साथ है। सो चलते हैं जो अगला फरमाइश है हमारे पास आई है, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा। इस गीत को आज मैंने लिया है फीमेल वॉइस पर, फरमाइश करने वाले है रजीना चौधरी एंड आनंद चौधरी फ्रॉम एशग्रोव एवेन्यू।

0: कीजिएगा, माफ कीजिएगा, शायद सही गीत नहीं है। हम आपके लिए सही गीत लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: सुनीता स्वामी की आवाज में ब्यूटीफुल इस गीत को, भजन गीत को आपने सुना, जिसे फरमाइश करने वाले थे रजीना चौधरी, आनंद चौधरी फ्रॉम एशग्रोव एवेन्यू। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701 किलोहर्ट्ज पर, हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से 3:30 बजने वाले हैं। दोस्तों, आज शायद हमारे पास उतना लंबा समय नहीं है, क्योंकि मेरा भी आज कुछ कमिटमेंट्स है, शायद 4 या 4:15 तक आपका हमारा साथ रहेगा।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं, साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: तो चलते हैं, एक ऐसा गीत हम सुनते हैं जिसे गाया है जावेद अली ने, और कल रात को भी जावेद अली ने इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी साहब के लिए, ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफी। और एक गीत जो है हमारे हाफिज भाई को बहुत पसंद है, उनका सभी फेवरेट सॉन्ग्स, बहुत से लोग हैं, दे वर चीयरिंग अप। और किसी ने मुझे कॉल करके पूछा, मैसेज करके, वाज इट सोल्ड आउट? यस, इट वाज सोल्ड आउट, द टिकट्स वर, इट वाज फुल हाउस एंड पीपल वर चीयरिंग एंड दे वर ऑल लविंग रफी सॉन्ग्स। तो हाफिज भाई जो है हमारे ब्रिस्बेन में, दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, और रफी साहब के गीत को इतना पसंद करते हैं और उनके गीतों को भी गाते हैं बहुत खूबसूरती से, उनकी आवाज भी थोड़ा सा उनसे मिलती है। तो चलते हैं आपकी फरमाइश पर, अगला गीत सुनते हैं। हाफिज भाई, जो आपने फरमाइश किया कल रात को, आपने इस गीत को भी सुना शो पर, जावेद अली खान, जावेद अली।

0: मैंने पूछा चांद से, तो इस गीत को फरमाइश किया था हाफिज भाई। इस गीत को आपने सुना जावेद अली की आवाज में, जिसकी शो कल रात को हुई थी ब्रिस्बेन में। और आगे और भी गीत है जिन्होंने कल रात को गाया था। कुछ लोगों ने हमें फरमाइश दिया है इस गीत की, तो इस प्रोग्राम में आप जरूर सुनेंगे दोस्तों।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं। हम पानी में वापस जा सकने के।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: चलते हैं दोस्तों, अगला गीत भी है जावेद अली खान की, जावेद अली की आवाज का गीत सुनना चाहते हैं। रफी साहब का गीत है वैसे, और किसने फरमाइश किया है। हम चलते हैं कैलम वेल की ओर, जहाँ पर हमें सुन रहे अशोक, मिस्टर मिसेस अशोक पारेख। आप दोनों के लिए अगला गीत रफी साहब का, जावेद अली का आवाज में आप सुनने जा रहे हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है,

0: एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुना जावेद अली की आवाज में, जिसे फरमाइश करने वाले थे पार्किंसन के मिस एंड मिसेस अशोक पारेख।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top-up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top-up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top-up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
12: Bigger, better deal.
0: चलते हैं अगले गीत की ओर, बढ़ते हैं केडरन पार्क की ओर चलते हैं, जहां हमें सुन रहे जोनी और सविता। आप सुनना चाहते हैं जावेद अली की आवाज का अगला गीत, सुनते हैं अगला गीत, क्या हुआ तेरा वादा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: किया वादा, बहुत प्यारा सा गीत फरमाइश करने वाले थे जॉनी एंड सविता फ्रॉम केडरन पार्क।
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 4:15 बज चुके हैं दोस्तों। रेडियो विस्पनी आईएम है, शाम का सफर है और आज आपके साथ है। सो हम चलते हैं, अगली फरमाइश है हमारे पास है शिकागो से अमला सिंह की ओर से और आप सुनना चाहती हैं, सुनते हैं।

0: गीत को फरमाइश करने वाले थे आमला सिंह फ्रॉम शिकागो।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, हम बढ़ते हैं, हम चलते हैं सिडनी की ओर, ग्रीन एकर सिडनी की ओर। रजिन और मालती प्रसाद हमें वहां सुन रहे हैं। आप दोनों के लिए पेश है अगला गीत।

0: गीत में दोस्तों हमारे साथ शामिल हो गए थे रजिन और मालती प्रसाद जो हमें सुन रहे हैं ग्रीन एकर्स सिडनी में।
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: सेलिब्रेट मॉम।
3: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। मैक्स, आपके लिए कुछ लेटेस्ट।

0: प्यारा संगीत, लेटेस्ट गीत आपने सुना. और हमारे साथ शामिल है इस वक्त मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
0: चलते हैं दोस्तों, हमारे पास वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से अनदर रिक्वेस्ट आई है, कॉल आई है और फरमाइश किया है सूजी नारायण. और यहाँ जिम्बुम्बा से सोनिया, जो अपने भाई को आज याद कर रहे हैं जिनकी डेथ हो गई, नंद किशोर की डेथ हो गई है. उनके भाई को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वहाँ नौसोरी फिजी में. और आज उनकी फ्यूनरल हुई थी तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि गीत तो उन्होंने फरमाइश किया. सूजी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, सोनिया फ्रॉम जिम्बुम्बा.

0: मुकेश की आवाज का गीत जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले हमें क्या पता। और फरमाइश किया था वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से सूजी नारायण, सोनिया फ्रॉम जिम्बुम्बा अपने भाई के याद में।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 4:15 बज चुके हैं दोस्तों। मुझे पता है कुछ एक्स्ट्रा सॉन्ग्स हमारे पास थे, कुछ फरमाइशी जो आज छूट गए हैं, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारे पास सेव्ड है सब गीते जो आपने हमें भेजा है नेक्स्ट सैटरडे को, यानी नहीं तो संडे को, सैटरडे या संडे वन ऑफ द डेज हम आपके लिए जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। हमारा आपका साथ वैसे हमेशा 5 o'clock तक रहता है, लेकिन आज किसी कारण हमें आज थोड़ा सा जल जाना पड़ेगा, इसीलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और यहाँ ब्रिस्बेन में इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड टुमारो, व्हाटएवर यू डूइंग, रिलैक्स, रिलैक्सिंग डे है आप सभी के लिए। और अगली सप्ताह के लिए हम यही कहना चाहते हैं, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, आई लव यू ऑल, गुड बाय। और याद रखिएगा, ठीक 5 बजे से आपके साथ हो जाएंगी शशि चौहान।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: 0400

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हाँ जी, खुशियों भरा है समा। कैसे हो आप, क्या हो रहा है? हाँ जी, मैं आज एक बार फिर आपका साथ देने के लिए आ चुकी हूँ, एक रंगीन शाम आपके नाम के साथ। और पूरे 2 घंटों के लिए आपका साथ मैं इसी तरह देती रहूंगी। एंड मुझे तो उम्मीद यही है कि आप भी हमारा साथ इसी तरह दोगे। तो मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज रविवार की शाम 3 तारीख मई है आज, और हम अपने 5वें महीने में दाखिल हो चुके हैं। मगर देखिए समय कितना तेजी से आगे भाग रही है ना, और इसी तरह मुझे पता है कि आप भी बस होले होले मेरे साथ चलते ही रहेंगे। समय चाहे जितना तेजी से चलें, मगर आप हमारा साथ दीजिए और होले होले हम कार्यक्रम को बस इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सप्ताहांत है, आज तो आखिरी दिन, और बहुत ही बढ़िया गई होगी आपके लिए और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जो भी आप किए होंगे, उम्मीद है कि सभी ठीक ठाक ही गए होंगे आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं एक गीत के साथ।
1: रंग

जी, एक हरा भरा कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए एंड उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी आज की ये कार्यक्रम। और देखिए, हमारे साथ कई उम्र के लोग जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए नए और पुराने गीतों का संगम और कुछ ऐसे गीत जो आपके मन को भाए, इसे हम ढूंढ कर लाते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो हमेशा, जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो हमेशा, उदास दिलों को हमदर्द तो मिलते हैं, हम सफर नहीं। सो सदा मुस्कुराते रहिए और चलते हैं डगरिया की ओर। हाँ।

0: CN to win and you
1: देखिए ये जो गीत आप सुन रहे थे फिल्म चलते चलते से हमने लिया आपके लिए, और उस समय उदित नारायण जी अपने पीक पर थे, अलका याग्निक के साथ उन्होंने इस गीत को बहुत ही बेखूबी से गाया एंड लोग बहुत ही पसंद किए थे ये नगमा। तो देखिए आज ऑफकोर्स हर हफ्ते मैं आपके लिए पारिवारिक विषय लेकर आती हूँ, और ये आने वाली जो 5 तारीख मई है, आने वाले मंगलवार, हर साल एक्चुअली मई महीने के पहले मंगलवार को पूरी दुनिया में विश्व एस्मा दिवस मनाया जाता है। एस्मा के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता है। इस दिन का उद्देश्य एस्मा के प्रति जागरूकता फैलाना, इसके लक्षणों को पहचानना और इसे रोकना होता है। तो इस खास मौके पर आज 6 बजे के बाद पारिवारिक विशेष सेगमेंट में हम जानेंगे क्या है एस्मा के जो रोग और इसके लक्षण क्या होते हैं और बचाव के चंद उपाय। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एस्मा से बहुत सारे लोग दुनिया में पीड़ित होते हैं, स्पेशली जहां पर पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होती है वहां पर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। मगर एनीवे 6 बजे के बाद में हम इस टॉपिक पर कुछ बातें करेंगे, एंड अगर आप किसी को जानते हो जो इससे पीड़ित है तो आप जरूर उन्हें सुनने के लिए बताइए, और लोगों को इसे हम भी जागरूकता फैलाना चाहते हैं इसके प्रति, एंड इसे हम जैसे कहा कि 6 बजे के बाद लेकर आएंगे, ठीक है। एंड चलते हैं, एक और हम गीत सुनते हैं, एंड इस बार भी ये जो नगमा है बहुत ही बढ़िया है, और इसे हमने फिल्म एक्चुअली बाजीराव मस्तानी से ली है, एंड आप देखे होंगे ये फिल्म, शायद दीपिका पादुकोण प्रियंका चोपड़ा एक साथ इस फिल्म में दिखे थे। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, हाँ।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत। और देखिए, ये बाजीराव मस्तानी का नगमा। और कुछ मैं आपको बताना चाहती थी, ऐसे कुछ चंद फिल्म्स हैं जो, जैसे कि देवदास, देवदास फिल्म को ले लो, तो इस फिल्म में बंगाली कल्चर को दिखाया गया था। और फिर उसके बाद रामलीला को ले लीजिए। सी, रामलीला में ये गुजराती कल्चर को इन्होंने बेखूबी से दिखाया। और फिर बाजीराव मस्तानी, जिसके गीत आप सुन रहे थे, ये मराठा कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। फिर पद्मावत, पद्मावत आप लोग देखे होंगे, इसमें ये राजस्थानी कल्चर को बहुत ही बेखूबी से पेश किया। तो इन सभी फिल्मों में कॉमन कौन सी बात है, मैं आपको ये बताना चाहती थी। इसमें कॉमन बात ये है कि ये सभी गीत इसमें ज्यादातर श्रेया घोषाल गाई थी, और संजय लीला भंसाली इसमें भी, इस फिल्म में, इस सभी फिल्मों को इन्होंने वो किया ना, डायरेक्ट किया। और श्रेया घोषाल बहुत ही बढ़िया ढंग से गीतों को गाए। और अभी तो आपको शायद पता ही होगा कि श्रेया घोषाल अपने वर्ल्ड टूर पर है एक बार फिर। वैसे तो कई बार वो आ चुकी है, मगर उनको जितना बार भी हम सुने ना, उसको स्टेज पर उनको देखे, उनकी एवरी टाइम शी कम्स, इट्स अमेजिंग। और उनको बस, हमको ऐसा लगता है कि हम उनको बस सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। सो दैट वॉज इन्फॉर्मेशन दैट इज वेरी स्पेशल, इजंट इट, कि इतने खास फिल्में, और सभी फिल्म जो मैंने अभी मैंशन की, जैसे देवदास, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, ये सभी बहुत ही स्पेशल मूवीज है, एंड लोग इसे बेशक बहुत ही पसंद किए। सो अगले गीत की बारी है।

हाँ जी, ये भी बहुत ही प्यारा से गीत एंड ऑफ कोर्स फिल्म मौसम से हमने इसे ली. और देखिए, आई होप आप जावेद अली शो देखने गए होंगे यहाँ ब्रिस्बेन में, एंड बहुत ही बढ़िया गया उनका शो. मुझे ऐसा ऐसा शो जो उन्होंने लेकर आया है, बहुत ही लोगों ने पसंद की है. एंड अब ये शो ओकलैंड जा रही है, सो आई होप अगर न्यूजीलैंड में जितने लोग सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स वो लोग जाएंगे और शो देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर बार ऐसे सिंगर्स आते हैं ना हमारे यहाँ पर देश में. सो जब आए तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए एंड जाकर इट्स अ प्रॉपर एंटरटेनमेंट. आप जाइए, जो माहौल क्रिएट करते हैं ये लोग ना, दिल खुश हो जाता है. सो वैसे तो हम बहुत सारे म्यूजिक सुनते ही रहते हैं, एंड यूट्यूब में सुनते हैं, सीडीज में सुनते हैं. आजकल तो बहुत कम सीडीज लोग सुनते हैं, मगर फिर भी ऑनलाइन सुनते हैं. सो कई रेडियोज में सुनते हैं ना हम, जैसे आपके लिए लेकर आते हैं. सो हमारे जितने भी अनाउंसर्स हैं अपने अपने तरह से सिलेक्शन करके आते हैं आपके लिए, तो ये सब तो हम सुनते ही रहते हैं, मगर जब लाइव शोज होती है ना, उसके जो माहौल क्रिएट की जाती है उनके द्वारा, आर्टिस्ट द्वारा, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. मैं तो ये कहूंगी, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं जब मैं शोज जाती हूँ ना. एंड हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं जो शोज लेकर आते हैं ना, आप उनसे बात करके पूछिए कि कितना कठिन काम होती है ये, जो विदेश से लोगों को लेकर आना यहाँ पर हमारे जैसे लोगों के लिए. तो हमें भी उनको सपोर्ट करनी चाहिए, चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए. सो प्लीज डू दैट. एंड मैं जावेद अली के एक बहुत ही प्यारा सा गीत, मुझे बहुत ही पसंद है ये नगमा, ये मैं आपके लिए अभी बजाने जा रही हूँ. आप इसे सुनिए एंड उनके आवाज को अपने दिल में उतारिए, ठीक है? एंड बताइए मुझे कौन से फिल्म का नगमा है ये.

हाँ जी, आए पसंद आपको ये गीत, और ये आवाज किसकी है? जावेद अली की। और ब्रिस्बेन वालों, बताइए मुझे आपने उनके शो को पसंद किया या नहीं। हाँ जी, तो यहाँ अब ऑकलैंड में आने वाली है, एंड आई मीन ऑकलैंड में ये शो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में आने वाली है। सो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जाकर सुनेंगे। एंड ये जो गीत, ये फिल्म जोधा अकबर से ली गई, एंड ऋतिक रोशन पर फिल्म आई गई। उनके साथ इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन थी, बहुत एब्सोल्युटली गोर्जियस लुकिंग एक्ट्रेस। और चलो कुछ ही देर में मैं छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट आपके लिए लेकर आऊंगी, मगर अभी तो ये गीत आप सुनिए। एंड ऑफ कोर्स मेरे जितने भी रेडियो ब्रिजवानी एक रंगीन शाम आपके नाम के लिसनर्स है, आपको मैं तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। अगर अभी अभी आप ट्यून इन किए हो हमारे साथ, आपको नमस्कार, कैमचो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, एंड भूला अगर आप कहीं पर भी हो वहाँ पर है और सुन रहे हो हमारे साथ, कार्यक्रम में जुड़ गए हो, तो बस इसी तरह होले होले मेरा साथ देते रहिए और हम आपको एंटरटेन करते ही रहेंगे। किशोर दा की आवाज, अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई फिल्म जमीर का यह नगमा।

हाँ जी, किशोरदा की आवाज और अमिताभ जी पर फिल्माई गई ये गीत, आप इमेजिन कीजिए अगर आप ये फिल्म नहीं देखे हैं तो। मैं तो कहूँगी कि इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड मूवी, और ये 1975 की फिल्म जमीर से ली गई थी। और एनीवे बस बातें मैं कर रही थी एक्चुअली छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट के बारे में, तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ ताकि आप तैयार रहे और इसे मिस ना करें, क्योंकि दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये गीत मैं जोधा अकबर की गीत जावेद अली के आवाज में पेश की थी आपके लिए, तो जावेद अली एक्चुअली ऑकलैंड जा रहे हैं फ्राइडे को नेक्स्ट वीक, मगर आज वो फिजी में अपने शो कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, फिजी में तो लोग पागल ही हो जाएंगे उनकी आवाज़ को सुनकर। सो याद रखिए, अगर आप न्यूजीलैंड में कोई भी कार्यक्रम सुन रहे हैं और अगर अभी तक आपने टिकट नहीं ली है तो प्लीज़ डू सो, क्योंकि यू डोंट वांट टू मिस दिस काइंड ऑफ शोज। और जैसे हमने कहा कि जो शोज़ में जाने का जो एम्बियंस होती है, वहाँ का जो माहौल होता है, That is fantastic. तो आप जरूर ऐसा कीजिए। और हाँ, और आज की जो छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में, आज जो बातें हम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए, यानी कि जो आप सुनने जा रहे हैं, वो है हमारे जो ये हमारे बच्चों के बारे में है। ठीक है, हमारे बच्चे सिर्फ हमारे या अपने परिवार के भविष्य नहीं होते हैं, ये आप मानते हैं ना, मगर वे एक देश या दुनिया के भविष्य होते हैं। आवर हमारे जो बच्चे होते हैं ना, आवर चिल्ड्रन, ये लोग हम सिर्फ हमारे भविष्य नहीं होते हैं, ये हमारे देश और हमारे दुनिया के भविष्य होती है, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे हमारे जगह लेंगे ना। ठीक है, तो जिस तरह के तालीम या सबक हम या गुण हम अपने बच्चों में डालते हैं या डालेंगे, वो बच्चा बड़े होकर उसी राह पर चलेंगे। नाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, सो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कुछ ही देर में मैं इसे आपके लिए लेकर आऊंगी और आप इसे जरूर जरूर सुनिएगा। एंड सो अब हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं 1973 की ओर। और आज जो गीत हम लेकर आए हैं वो फिल्म झील के उस पार की है ये फिल्म, और इस फिल्म में मुमताज और धर्मेंद्र जी दिखे थे। धर्मेंद्र जी तो आज हमारे समक्ष नहीं है, हमारे बीच नहीं है दुनिया में, मगर मुमताज जी जरूर है। तो उन्हीं के इस गीत को आप सुनिए किशोरदा की आवाज में एक बार फिर। हाँ जी, ब्रिस्बेन का माहौल भी आज बहुत ही बढ़िया है, मौसम बहुत ही बढ़िया है, मैं यही कहूंगी। ज्यादातर बादल छाई हुई है, गर्मी कुछ कम है, लगभग 22 डिग्रीज़।

0: ऑसम, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ही लाजवाब, फैंटास्टिक, ग्रेट लेजेंड किशोर दा जी, एक ऐसी आवाज जो हमारे रूह को सुकून प्रदान करती है। आपने ऐसा महसूस किया या नहीं? मैं तो बेहद एंजॉय करती हूँ, ये जो सॉन्ग्स मैं प्ले करती हूँ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, एंड मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी रूह को भी सुकून प्रदान की होगी ये पर्टिकुलर सॉन्ग। फैंटास्टिक है ना? सो एनीवे, चलो अब हम चलते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में लेकर आऊंगी, और इतनी बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो ये डॉक्टर असाद जी पेश करने जा रहे हैं आपके लिए।
1: क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने बच्चे की हर जिद उसके मांगने से पहले पूरी कर देते हैं तो आप उसे मोहब्बत नहीं दे रहे होते बल्कि आप उसे नफसियाती तौर पर अपाहिज कर रहे होते हैं। मैं जानता हूं कि ये सुनना तकलीफ देह है क्योंकि आपने ये सब कुछ प्यार के लिए किया है, लेकिन प्यार और बिगाड़ के दरमियान एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है और हम में से अक्सर वो लकीर पार कर चुके हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि पैसा हाथ की मैल है। सच तो ये है कि पैसा आपकी कुर्बानियों का नाम है, आपकी नींदों का नाम है, आपके उन लम्हों का नाम है जो आपने अपने बच्चे के साथ खेलने के बजाय दफ्तर में गुजारा। अगर आपका बच्चा 10 साल की उम्र तक ये नहीं जानता कि उसके हाथ में मौजूद 100 रुपए का नोट आपकी जिंदगी के कितने घंटे निगल चुका है, तो याद रखें, वो बड़ा होकर ना पैसे की कदर करेगा ना ही आपकी। आज हम सिर्फ बचत की बात नहीं करेंगे, आज हम उस ज़हनियत की बात करेंगे जो एक बच्चे को महज सारिफ से निकालकर मालिक बनाती है। ये आपके बच्चे के बैंक अकाउंट के लिए नहीं है, ये उसके आने वाली जिंदगी के सुकून के लिए है। सबसे पहला सबक ये है कि कीमत टैग पर लिखी होती है, कदर दिमाग में होती है। आजकल के बच्चे चीजों की कीमत जानते हैं, कदर नहीं। उन्हें पता है आईफोन कितने का है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इसके पीछे कितनी रातें जागते गुजरी हैं, कितनी बार बाप ने अपनी ख्वाहिशें दबाई हैं, कितनी बार माँ ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा ताकि बच्चे की फरमाइश पूरी हो सके। उसे एक काम सिखाएं जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, पैसे को वक्त की जुबान में पढ़ना। अगली बार जब वो कोई चीज मांगे तो उसे ना मत कहे बल्कि बैठ जाए, उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले और आहिस्ता से पूछे कि बेटा तुम जानते हो कि बस सुबह से कहाँ है। वो जाते हैं ताकि तुम मुस्कुरा सको। जो खिलौना तुम मांग रहे हो उसके लिए अब्बा को 5 घंटे अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ता है, 5 घंटे जो वो तुम्हारे साथ खेलते हुए गुजार सकते थे, तुम्हारी कहानियां सुनते, तुम्हें हंसाते हुए। तुम बताओ क्या ये खिलौना उन 5 घंटों से बड़ा है? फिर खामोश हो जाएं और उसे सोचने दें। उस एक लम्हे में आपका बच्चा वो समझ जाएगा जो बरसों की तालीम उसे नहीं समझा सकती कि पैसा कागज नहीं, ये किसी की जिंदगी के कीमती लम्हे हैं। जब बच्चा पैसे को वक्त से जोड़ता है तो कुछ मौजाती होता है, वो फजूल खर्ची नहीं छोड़ता, वो एहतराम सीखता है और ये एहतराम किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। दूसरा सबक है तकसीम का हुनर। अपने बच्चे को सिर्फ गुल्लक या पिगी बैंक ना दें, उसे एक निजाम दें। उसके 3 हिस्से उसे समझाएं। पहला जरूरत, जो भी चाहिए। दूसरा बचत, जो कल के बड़े ख्वाब के लिए है। और तीसरा, और ये सबसे अहम है, खैरात, जो दूसरों के काम आना है। मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ जो शायद कोई ना बताए। जिस बच्चे के हाथ से बचपन में सदका दिलवाया जाता है उसके अंदर से लालच की जड़ें खुश्क हो जाती हैं, उसका दिल खुल जाता है, और जिससे बचत करवाई जाती है उसके अंदर सब्र का वो पहाड़ बनता है जो जिंदगी का कोई तूफान नहीं हिला सकता। और 220 साल बाद जब माशी बहरान आएगा, जब नौकरी चली जाएगी, जब हालात डराएंगे, तो यही बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा क्योंकि उसे पता होगा कि जज्बात को पैसों पर कैसे काबू किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा सबक फौरी खुशी का जहर है। हमने अपने बच्चों को अभी और इसी वक्त का आदि बना दिया है। वो रोए तो फौरी मिल जाता है, वो जिद करे तो फौरी मिल गया, और हमने सोचा कि हमने उन्हें खुश किया, लेकिन दर हकीकत हमने उनके दिमाग की वो ताकत छीन ली जो उन्हें बड़े होकर डिप्रेशन, नशे और गलत फैसलों से बचाती थी। आप उसे इंतजार कराएं, अगर वो कुछ मांगे तो कहें कि हम ये अगले महीने ले लेंगे। ये 1 महीने का इंतजार उसके दिमाग को इस कदर मजबूत बनाएगा जो किसी भी दवा से नहीं बन सकता। वो सीखेगा कि खुशी खरीदने में नहीं बल्कि किसी चीज को हासिल करने की जद्दोजहद में है। और दोस्तों, अब आखिर में मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपको अंदर से हिला कर रख दे। आप अपने बच्चे के लिए करोड़ों की जायदाद गाड़ियां, घर सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे पैसे की कदर नहीं सिखाई तो वो उन करोड़ों को चंद सालों में मिट्टी कर देगा और इस मिट्टी में आपकी सारी मेहनत, सारी कुर्बानियां, सारी जवानी दफन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे खाली हाथ छोड़ा लेकिन उसके दिमाग में पैसे की नफसियात और सबर का हुनर डाल दिया तो वह मिट्टी से भी सोना बनाने की ताकत रखेगा, क्योंकि वह अमीर नहीं होता जिसकी जेब भरी होती है, अमीर वो होता है जिसकी सोच खुद मुख्तार होती है। अपने बच्चे को सारिफ या कंज्यूमर ना बनाए बल्कि सरमायाकार बनाए, उसे नोटों से प्यार करना नहीं नोटों को इस्तेमाल करना सिखाए, क्योंकि आपकी दी हुई रकम एक दिन खत्म हो जाएगी लेकिन आपकी दी हुई दानिश वो नस्लों तक सफर करती है, नस्लों तक। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्त।
0: हाँ जी, कैसा लगा आपको ये बातें? ये बहुत ही बढ़िया, एंड हमें अपने बच्चों को ये सीख देनी जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप होपफुली आप ये ना सोचे कि हम ये इन बातें को आप पर थोपते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप गंभीरता से सोचें तो ये बहुत ही बड़ी बात है जो साहब जी ने बताया। और देखिए, इस दुनिया में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अमन, चैन और शांति हमको मिले, तो इन सभी की तालीम हमें अपने बच्चों को देनी बहुत जरूरी है, तथा एक खूबसूरत जीवन जीने की शिक्षा जो है इनको मिले, बच्चों को मिले, और ये बेहद जरूरी है। और इंसानी जीवन बहुत मुश्किल के बाद हमें मिलती है, ये तो आप मानते ही हैं ना, बहुत ही कठिन से हम गुजरते हैं, कठिनाइयों से तब हमको जाकर ये ह्यूमन फॉर्म मिलती है ना। तो ये जब हमको मिलती है तो हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए, इसे बहुत ही बढ़िया ढंग से रखनी चाहिए, ता अच्छे कर्म करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ हिल मिल कर जीवन बितानी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या होने वाली है। सो चाहे शायद मैं रिलीजन को टच करना चाहती हूँ यहाँ पर, को टच करते हैं हम सभी के, रिलीजन बहुत कुछ बताती है हमें, बहुत कुछ सिखलाती है हमें, मगर ईश्वर ने किसी को ये मौका नहीं दी है कि वे वापस आकर हमें अपडेट करे कि क्या हम यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ क्या होता है, किसी को नहीं पता। वैसे कहते हैं सभी कुछ, ठीक है, लोग कहते हैं, बताते हैं कि ये होता वो होता ना, मगर आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी रिलीजन अपने अपने जगह पर इम्पोर्टेंट है, मगर रिलीजन को लेकर इंसानियत पर खौफ पैदा ना करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये सभी बातें, ये अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को हमें सिखानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें रहें, ठीक है। तो ये थी छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में, रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूं, और पूरे दो घंटों तक, 5 से 7 बजे तक आपका और हमारा ये सफर रहता है, और ये सफर एक रंगीन शाम आपके नाम।

देखिए, काश मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे साथ अभी होते तो कितने कितने शानदार गीत हमें देते ना वो। मगर अब वो भी हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी जो नगमे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से नगमे हैं, वो हम लोगों को बस अपने मधुर आवाज़ से एंटरटेन करते हैं। एंड हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे ऐसे गाने आपके लिए लेकर आए जो जो आपके दिल को खुश कर दें। एंड देखिए, 6 बजे के बाद हम आज बातें करेंगे पारिवारिक विषय में, एक्चुअली एस्मा के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एस्मा दुनिया भर में कई लोगों को है। इसके बारे में हम जानेंगे, जिन लोगों को नहीं पता है तो कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। और खास तौर से इस टॉपिक को हम लेकर आने वाले हैं, जबकि इसी मंगलवार 5 तारीख को एस्मा वर्ल्ड एस्मा डे है। इसीलिए हमने सोचा कि ये आपके लिए लेकर आऊं। मगर कैसी है आपकी ये शाम? मैं तो कहूंगी बहुत ही मस्तानी है आज की ये शाम। तो एंजॉय करिए ये गीत एक बार फिर किशोदा की आवाज में, फिल्म कटी पतंग से हमने इसे सेलेक्ट किया है।

0: जी, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल क्लियर हार्ट टचिंग मेलोडियस वॉइस. उफ, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग क्रिस्टल क्लियर हार्ट टचिंग सोलफुल मेलोडियस वॉइस है ना जी, किशोरदा की. एंड उनके साथ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कंपोजिशन, ये दोनों की जोड़ी बहुत बेस्ट. म्यूजिक डायरेक्टर आर डी वर्मन जी, बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया. तो देखिए, पुराने गानों में बड़ी ही खास बात होती है ना. रिलीज को बेशक कई दशक बीत जाते हैं, जैसे इस गीत के लिए कई दशक बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनको सुनना एकदम नया सा लगता है, एकदम नया सा लगता है. सो आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, एंड दिस इज रेडियो ब्रिजवानी.
1: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए.
0: हाँ जी, सुनते ही रहिए. एक बार फिर, अगर आप अभी अभी ट्यून इन किए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम तहे दिल से कर रहे हैं स्वागत आपका. एंड पूरे 7 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगी. एंड थोड़ी ही देर में बस हम पेश करेंगे आपके लिए आज के जो पारिवारिक विषय हैं. एंड आप इसी तरह हमारा साथ देते ही रहिए और हम आपका साथ देते ही रहेंगे. चलो थोड़े नए गीत की ओर चलते हैं. फिल्म पीके से हमने चुन रखा है नोटोरियस सॉन्ग.

हाँ जी, फिल्म पीके का गीत आपके लिए पेश कर रही थी। अगर आप ये फिल्म नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, इसमें आपको एक्चुअली आमिर खान की पागलपना देखने को मिलेगी। एंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रही है फिल्म, मगर फिर भी लोगों ने इसे पसंद जरूर किए। हाँ जी, तो चलते हैं पारिवारिक विषय की ओर। तो जैसे हमने पहले कहा कि आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो वर्ल्ड एस्मा डे की ये टॉपिक है, एस्मा पर ये टॉपिक उस पर है। तो जैसे हमने पहले आपसे कहा कि हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को पूरी दुनिया में, हाँ जी पूरी दुनिया में ये दिवस मनाई जाती है, वर्ल्ड एस्मा डे। और इस दिन का उद्देश्य एस्मा के प्रति जागरूकता फैलाना होता है और इसके लक्षणों को पहचानना और इसे रोकना है। और खास मौके पर मैंने सोचा कि मैं भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करूँ ना, सो दैट जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में तो वो जान सके और एस्मा से बच सके, क्योंकि जो ये श्वास है हमारा, जो हमारे सांस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारे सांस बंद हो गई तो फिर हमारा कुछ मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो पहले पहल तो शुरू करते हैं कि क्या है विश्व एस्मा दिवस का इतिहास, ये हम जानेंगे। तो विश्व एस्मा दिवस की शुरुआत एक्चुअली 1998 में एक ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा यानी जीना ने की थी, और इसका उद्देश्य लोगों को एस्मा की गंभीरता, उनकी लक्षणों और उनके प्रति लोगों को जागरूक करना था। तब से लेकर इस साल दुनिया भर के स्वास्थ्य ग्रुप्स, जो ग्रुप्स होते हैं, तो उनके साथ मिलकर इस विशेष दिवस का आयोजन ये लोग करते हैं, जो वर्ल्ड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा जीना बोल के करते हैं जो ग्रुप ना। तो चलो हम जानते हैं कि क्या है एस्मा। वैसे तो आप में से कई लोगों को पता ही है, मगर मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ जिनको शायद ना पता हो। तो एस्मा जो है वो फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से रोगी को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। इसमें फेफड़ों की जो नालियां होती है ना वो सूज जाती है, जिससे सांस फूलने, खांसी जैसे लक्षण नजर आने लगती है। धूल, धुआं और ठंडी हवा के कारण ये बढ़ सकता है। सही इलाज और सावधानी से एस्मा को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, मगर समय रहते अगर पीड़ित व्यक्ति को एस्मा का सही उपचार ना मिले तो स्थिति काफी गंभीर भी हो सकती है, ठीक है। तो एस्मा के लक्षण क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है आप सोच रहे होंगे। तो पहली तो ये है बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं ना, और दूसरी खांसी जो रात में और गंभीर हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई जो कि दौरों के रूप में तकलीफ देती है, और सीने में जकड़न जैसा महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना, और ठंडी हवा में सांस लेने से हालत गंभीर होना। तो ये है एस्मा के कुछ लक्षण सिम्टम्स। और एस्मा के कारण क्या होती है आप सोच रहे होंगे। तो आजकल बढ़ते प्रदूषण यानी पोल्यूशन की वजह से ज्यादातर लोगों को दमा की शिकायत हो रही है, जैसे कि व्हीकल्स से निकलने वाले धुएं के अलावा एस्मा के पीछे सर्दी, फ्लू, स्मोकिंग, मौसम में बदलाव, एलर्जी वाले फूड्स और दवा और शराब के अधिक सेवन के साथ भावनात्मक तनाव भी एस्मा का कारण बन सकता है। तो एस्मा से बचाव कैसे करें? प्रदूषण से बचाव के लिए पहला तो प्रदूषण है ना, तो प्रदूषण से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय आप चेहरे पर मास्क जरूर लगा सकते हैं और लगाना चाहिए, जैसे कोविड के टाइम हम मास्क लगाते थे ना उसी तरह के। और बारिश में भी ध्यान रखनी चाहिए। कहा गया है कि योग करने से भी एस्मा पर कंट्रोल किया जा सकता है, खास तौर से सूर्य नमस्कार,
प्राणायाम, भुजंगासन जैसे योग किया जा सकता है। जो जो लोग योगा से वाकिफ है, योगा करते हैं, उन्हें सभी उन सभी को ये समझ में आ रही होगी, मगर जो नहीं करते हैं तो उनको पता नहीं है कि सूर्य प्रणाम क्या है, क्यों किया जाता है वगैरह वगैरह, या कैसे किया जाता है। मगर जो योगा है, इट्स रियली गुड। बगैर दवा के आप कई तरह से अपने जो भी होते हैं इश्यूज उनको थाम सकते हैं ना। एंड देखिए, दूसरी बात ये है कि एस्मा रोगियों को कहा गया है कि हाँ, इससे बचाव की बात मैं कर रही थी ना, तो एस्मा रोगियों को प्रोटीन, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडे यानी एग्स, मछली यानी फिश, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों का सेवन कम मात्रा में करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसका सेवन हम करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमको होती है। और साथ में फास्ट फूड, मानसिक चिंता या यू नो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब से हमको दूर रहना चाहिए। डिप्रेशन या स्ट्रेस से भी एस्मा इशू होने लगती है। और एस्मा रोगी को अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई युक्त खान पदार्थ शामिल करनी चाहिए। और दो तिहाई से अधिक रोगियों में, ये मैं कहना चाहती हूँ कि दो तिहाई यानी 2/3 से अधिक रोगियों में बचपन से ही शुरू हो जाती है ये बीमारी, ठीक है, ये बीमारी शुरू हो जाती है। और इसमें बच्चों को खांसी होना, सांस फूलना, सीने में भारीपन होना, छींक आना व नाक बहना भी होता है प्रॉब्लम, तथा बच्चों का सही विकास ना हो पाना जैसे लक्षण होते हैं। तो एक तिहाई लोगों में दमा के लक्षण युवा अवस्था में प्रारंभ होते हैं, और इस तरह ये जो एस्मा की बीमारी होती है ये बच्चों या युवा अवस्था में भी आरंभ होने वाला रोग है। तो इलाज के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? तो दमा या एस्मा के इलाज में इनहेलर चिकित्सा यानी इनहेलर जो होते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दवा की मात्रा का कम इस्तेमाल होता है और इसका असर सीधा सांस नलियों और फेफड़ों पर होता है, और इसलिए एस्मा में इनहेलर चिकित्सा की सलाह दी जाती है। मगर याद रखिए, डॉक्टर के अनुमति के बगैर आप इसको इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, मगर चलो हम एस्मा के जो चंद उपाय हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, मगर उससे पहले चलो एक और गीत सुन लेते हैं और फिर बाद में आपको बताएंगे कि एस्मा को कैसे हम रोकने का उपाय

0: चलो इसे हम यहीं पर छोड़ रहे हैं एंड
1: एक रंगीन शाम आपके नाम सुनते रहिए।
0: हाँ जी, सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन 7 बजे तक आपका साथ दूंगी। हाँ जी, बिफोर वी स्टार्ट अगेन अपने पारिवारिक विषय मैं कहना चाहती हूँ कि आज के जो इंग्लिश शब्द है वो है ब्रीदिंग। ठीक है, तो BREATHING ये ब्रीदिंग, आप इनके जो हिंदी शब्द है इसे हमारे लिए ढूंढ कर लाइए एंड कुछ ही देर में हम ऑफ कोर्स आपको अपने तरफ से बताएंगे, इन केस आपको ना पता चल सके कि कौन से हिंदी वर्ड है तो अपनी तरफ से हम बताएंगे। ठीक है, एंड तो देखिए एस्मा को रोकने के लिए जो चंद उपाय वो क्या हो सकते हैं, तो वो है मौसम में जो घटते बढ़ते जो तापमान होती है, तापमान में अपना ध्यान रखें एंड दमे की दवा हमेशा अपने पास रखें, और कंट्रोल इनहेला जो होती है हमेशा अपने संग आप रखें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो सिगरेट, ये जो सिगार व बीड़ी के धुएं से बचें, अपने फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए सांस का व्यायाम आप करिए, और यदि बलगम गाढ़ा हो गया है तो खांसी घड़घड़ाहट और सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाए या रिलीवर इनहेलर की ज़रूरत बढ़ गई हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप मिले। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि धूल गंदगी से आप बचिए, पंख या रेशम के तकिए का इस्तेमाल ना करें, और इसके साथ साथ घर के अंदर फूलों वाले पौधे या ताज़े फूल ना रखें, और अगर रोगी एयर कंडीशन या कूलर के कमरे से एकदम गर्म हवा में बाहर आप ना जाइए, अगर ठंडे एयर कंडीशन रूम में आप हो तो बाहर आप जब निकलते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है तो उससे आप बचाव करें, और यात्रा के दौरान बच्चों को लेकर व्हीकल की जो खिड़की के पास आप ना बैठे, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा लंबे ना ले आप, और धुआं धूल मिट्टी वाली जगह के बिना नाक मुंह ढके आप ना जाएं, और कभी कभी परफ्यूम या डिओड्रेंट का जो हो उसका भी इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि उससे भी एस्मेटिक लोगों को असर पड़ सकता है। और इसके साथ साथ मच्छरों को भगाने वाली जो कोयल होती है ना, या अगरबत्ती के साथ ही साधारण अगरबत्ती जो धूप बत्ती होती है का भी इस्तेमाल आप ना करें, और घर की सफाई, हाँ जी घर की सफाई या पेंट, नहीं घर में जब पेंट लगती है तो उसके समय रोगी घर में ना रुके, घर से बाहर ही रहे एंड क्योंकि अगर घर के अंदर पेंट हो रही है तो, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो देखिए डॉक्टर सूर्यकांत जी बताते हैं कि प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, उनकी ओर से ये सभी बातें मैं आपको बता रही थी एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर यही बताते हैं कि गंभीर स्थितियों में एस्मा अटैक के मामले खतरनाक हो सकते हैं, कुछ स्थितियों में आपातकालीन उपचार की भी आवश्यकता हो सकती है, तो एस्मा के दौरान आप बी वेरी केयरफुल और घबराइए नहीं, आप एम्बुलेंस फोन कर सकते हैं अगर बहुत ही गंभीर बात हो, या फिर बच्चे को या किसी को भी बड़े को जिसको ये रोगी है उनको आप डॉक्टर के पास ले जाइए एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिए अगर किसकी को एस्मा की बीमारी हो ये गंभीर रूप धारण कर सकती है, ठीक है, तो इस सभी को आप ध्यान में रखें एंड मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ ताकि आप अवेयरनेस क्रिएट हो आपके लिए एंड इनमें से जो भी मोतियाँ आप चुनना चाहें चुन सकते हैं, जो आपको ठीक लगे ना, और अगर ना ठीक लगे तो आप उसे बेशक बेअंदाज कर सकते हैं, मगर याद रखिए कोई भी इशू हो अपने डॉक्टर से ज़रूर आप चेक करिए, उनसे बातें कीजिए एंड या एंड दे विल टेल यू, वो आपको बताएंगे क्या सही है क्या नहीं। चलो एक और गीत सुनते हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है मगर फिर भी ध्यान रखें, हैव टू बी कॉशियस। हाँ

जी फिकर ना कीजिए, फिकर से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. हाँ जी, अस्थमा भी हो सकती है. ठीक है, सो बी केयरफुल एंड ऑफ कोर्स हो सकता है ये सब, मगर हर बार नहीं. ऐसा मत ले लेना कि थोड़े से चिंता हो गई तो हमको अस्थमा हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं. मगर फिर भी हो सकती है, राइट? सभी इंडिविजुअल अलग अलग हम होते हैं, तो हमारी जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है, हमारी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, सो चलो. नई गीतों की बारी है.

0: एक रंगीन शाम आपके नाम सुनते रहिए।
1: हाँ जी, अगर आज आपका जन्मदिन है तो खास तौर से मैं आपको याद कर रही हूँ और यहाँ से आपको बस बेस्ट विशेस भेज रही हूँ। रेडियो ब्रिजवानी की ओर से भी आपको आपकी लंबी आयु की हम प्रार्थना करते हैं और आप हंसी खुशी अच्छी अच्छी तरह से अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और अगर आपका वेडिंग एनिवर्सरी है या शादी है तो ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो जोड़ी है ये सदा सलामत रहे एंड आप बहुत ही खुशी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए, ठीक है? क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि हमें जो ज़िंदगी मिलती है ना, इनसे इनमें हमें खुश रहना चाहिए। खुशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो उससे कई सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं ना, ये तो आप सभी जानते हैं, दिस इज़ नथिंग न्यू। एंड सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप बस अच्छी तरह से रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे का साथ देते ही रहिए, ठीक है? तो चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय बहुत ही कम है, तेजी से भाग रहे हैं।
2: सुबह से शाम तक
3: व्हाट आई विल डांस, माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
2: शाम से रात्रि तक
3: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग,
4: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा, लगा कैसा?
2: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
3: हिल मत चल,
4: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा? ओके
3: सॉफ्ट,
1: हाँ जी, देखिए।

0: अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए एंजेला से। रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से हम आपके लिए एडवर्टीजमेंट्स आपके आगे अपने लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो जरूर कॉल एंजेला पूरन।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: हाँ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी का ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम है एक रंगीन शाम आपके नाम, ठीक है? सो आपके नाम आपका ये कार्यक्रम।
3: हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: हाँ जी, सुनते रहिए एक रंगीन शाम आपके नाम, ठीक है? तो इसी तरह 7 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी।
4: डिजिसेल टॉप अप टू लव्ड वंस इन फिजी इज सुपर इजी। केवल अपने नियरेस्ट डेयरी, सुपरमार्केट और पेट्रोल स्टेशन पहुंचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 टॉप अप। आप वेबसाइट www.digicelinternational.com विजिट भी कर सकते हैं। डिजिसेल टॉप अप अपने फैमिली को फिजी देने के लिए। पैसा भेजने के लिए आवर पार्टनर क्लिक एक्सप्रेस पिक इज द इजिएस्ट वे टू सेंड मनी टू डिजिसेल Fiji। केवल आपको रजिस्टर होना है at www.clickexpresspic.com पर। Digicel, we are better together।
0: हाँ जी, फिजी का नाम सुनकर मुझे याद आए कि आज जावेद अली का शो फिजी में, वहां पर लोग मजे उठा रहे हैं, और यहाँ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ये अगले सप्ताह।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: हाँ जी, तो याद रखिए कि एडवर्टीजमेंट के लिए आप संपर्क कीजिए एंजेला पूरन को, एंड यस, आप रेडियो ब्रिजवानी का सपोर्ट कीजिए। रेडियो ब्रिजवानी आपके सपोर्ट करेंगे, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, हमारे लिसनर्स तक आपके मैसेज को बढ़ाएंगे, ठीक है? तो यस, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम। मैं शशि जोखन पूरे 7 बजे तक आपका साथ दूंगी, एंड चलते हैं अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ। वो एक गीत है जो फिल्म परिणीता से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं।
6: बचिए है, पूरे 8 आने धुन सुनाओ ना।
7: अरे नहीं ना।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

हाँ जी, अनदर मास्टरपीस, बट इस बार सोनू निगम और श्रेया घोषाल एक साथ मिलकर, और हमने जैसे कहा ना, श्रेया घोषाल भी आ रही है. एनीवे, चलो, मैं जो इंग्लिश शब्द आपको बताई थी ना, एंड द शब्द वाज, द वर्ड वाज ब्रीदिंग, ठीक है. तो ब्रीदिंग जो हिंदी वर्ड है ब्रीदिंग के लिए, क्या आपने पता मालूम हुआ आपको? हुआ ना? नहीं तो कोई बात नहीं, हुई. एनीवे, ब्रीदिंग इस हिंदी में इसे सांस लेना बोलते हैं, ठीक है, सांस लेना, सांस लेना. तो जैसे इसे एग्जांपल के तौर पर आप इसे कह सकते हैं, ये बहुत ही ये जो सांस लेना है ना, इट रिफर्स टू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस. जैसे ये बहुत ही क्रूशल है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है. तो गहरी सांस ले, टेक अ डीप ब्रेथ, या फिर मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, यानी कि आई एम हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ठीक है. तो कुछ सेंटेंस के तौर पे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो डीप ब्रेथ होते हैं ना, उसे गहरी सांस बोलते हैं, और ब्रीदिंग या टू ब्रीथ को सांस लेना बोलते हैं. और ब्रीद इन यानी सांस अंदर करने का, ये सांस अंदर लेना इसे ब्रीद इन बोलते हैं, और सांस बाहर छोड़ना उसे ब्रीद आउट बोलते हैं, ठीक है. तो कठिन व्यायाम के बाद मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे ही सेंटेंस के में आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं. और दूसरी बात है, योग करते समय गहरी सांस लेनी चाहिए, या फिर ताजी हवा में सांस लेने से अच्छा लगता है हमें, ठीक है. या फिर, और ये भी आप बोल सकते हैं कि एस्मा के कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है. तो एस्मा के बारे में ही हम बात कर रहे थे आज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर के छोटे बच्चों को जब एस्मा की बीमारी हो जाती है. गॉड, कैसे देख सकते हैं हम ये बहुत ही, या फिर कभी कभी हमारे पेट्स को हो जाती है ना सांस लेने की प्रॉब्लम. सो देखिए, अगर थोड़ा भी आपको लगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बार बार जल जल लेनी पड़ती है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर को देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो एनीवे, तो ये थी ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के का मतलब है, हिंदी में इसे बोलते हैं सांस लेना, ठीक है. ओके, तो हो सके तो औरों को भी आप बताइए. एंड तो अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है, एक्चुअली हमने सोचा कि आज मैं एक गज़ल भी आपके लिए लेकर आई हूँ, मगर गज़ल से पहले आपको लेकर चलती हूँ धुरंधर की ओर. हाँ, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग.

0: हाँ जी, सो ये धुरंधर का नगमा, ठीक है. एंड इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि आज आपके लिए मैं एक गजल लेकर आई हूँ. एंड सो गजल तो ऑफ कोर्स तैयार है आपके लिए, सुनिए इसे.
1: गानों वाला,
0: हाँ जी. सो ये है आज का कार्यक्रम, एंड कार्यक्रम का नाम है एक रंगीन शाम आपके नाम, जो हर रविवार को मैं लेकर आती हूँ. तो जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा ये

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा ये गजल चित्रा जी और जगजीत जी की आवाजों में. एंड वैसे तो हमारे पास लगभग चंद मिनट ही बचे हैं, मगर ये आखिरी गीत आपके लिए पेश कर दूं लता जी की आवाज में.

हाँ जी, लता जी और भूपेंद्र सिंह के आवाजों में ये गीत। और देखिए, मैं इसी के साथ यहाँ से रुखसत ले रही हूँ। आज का हमारा और आपका ये जो रंगीन सफर, एक रंगीन शाम आपके नाम, बस यहीं तक आप हम यहाँ से रुखसत ले रहे हैं। आप खुश रहिए, औरों को खुश रहने का मौका जरूर दीजिए। और अगले सप्ताह तक मैं आपके साथ जुड़ने की भरसक कोशिश करूंगी। देखिए, अपने ऊपर विश्वास रखें, जितना आप करते हैं उससे कहीं अधिक आप जानते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं कहती हूँ आपको, बस अपना ख्याल रखिए।

अगर आपके भी दिल में है किसी के लिए प्यार, जागे हैं नए नए जज्बात, या कहना चाहते हैं आप भी किसी से अपने दिल की बात, तो इस वक्त आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। ये सफर है फरमाइशी गीतों का, जहां पर आप हमें अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट कर सकते हैं और किसी को डेडिकेट करके ये बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है। वैसे भाई ये डेडिकेशन आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, खुद को भी बता सकते हैं कि आपको किसी गाने से कितनी मोहब्बत है या फिर आप खुद के लिए कितने जरूरी है। तो चलिए फटाफट से हमें लिखिए हमारे रेडियो पिस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। वैसे मैं बता दूं कि इस सफर में है आज एक बार फिर से आपकी सताक्षी आपके साथ। आपकी फरमाइशें, आपकी बातें और कुछ अनकहे अंदाज लेकर हम फिर से हाजिर हैं। देखेंगे कि किसका है आज पहला मेल, पहला जज्बात हम किसका लेने जा रहे हैं। लेकिन लेकिन लेकिन शुरुआत इस बढ़िया से ट्रैक के साथ करने जा रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और कहीं मत जाइएगा भाई। बेशक आपने हमें फरमाइश ना की हो, लेकिन जिन लोगों ने की है उनके गाने भी बड़े जबरदस्त हैं। वैसे मैं तो ये कहती हूँ कि लगे हाथ आप भी बता दीजिए कि कौन से हैं आपके पसंद के गाने। केप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

वैसे आप जरूर ये जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आज की पहली मेल हम किसकी लेने जा रहे हैं और कहां से लेने जा रहे हैं। तो भाई आज की जो सबसे पहली मेल मैं लेने जा रही हूँ दोस्तों, वो है प्रमिला राव की सूर्य बीसी से। प्रमिला हमारी रेगुलर लिसनर है और उनकी काफी फरमाइशें हम हमेशा लेते भी रहे हैं और आज भी उन्होंने हमें अपनी फरमाइश लिख के भेजी है। वैसे सच में दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब रेगुलर लिसनर्स हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाते हैं, तो पता है ये लगता है कि यार हम भी उन्हें कुछ दे पा रहे हैं। मतलब वो अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें रोज सुनते हैं, तो हम भी बदले में उन्हें कम से कम उनकी फरमाइश ही पूरी कर पा रहे हैं। आज प्रमिला एक बार फिर से कहती हैं कि आज भी मेरी एक फरमाइश है, उसे प्लीज जरूर शामिल कीजिएगा। जरूर प्रमिला जी, हम लेंगे आपकी फरमाइश। आप सुनना चाहती हैं बेबसी दर्द का आलम। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, बेबसी दर्द का आलम। ये गाना बेसिकली है फिल्म बाबुल का, जॉन अब्राहम, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन का पिक्चराइजेशन है इस गाने में और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। इसे कंपोज किया है आदेश श्रीवास्तव ने, लिरिक्स हैं समीर के और इसको आवाज दी है कुणाल गांजावाला ने। तो चलिए बिना देर की आपके लिए ये गाना प्ले करने जा रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए एंड हमारे साथ यूं ही सुनती रहिएगा हमारे सारे प्रोग्राम्स। और अभी ये गाना आपके लिए, अगली फरमाइश जरूर मुझे अपनी पहुंचाइएगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फरमाइशी गीत। जी हाँ, इसी सफर को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। आज फरमाइशी गीतों में एक बार फिर से हम आपकी फरमाइशों के गाने आपके लिए प्ले कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सफर आपको इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई, किसी से अपने दिल की बात कहनी है, किसी के एहसासों को जगाना है या अपने एहसासों को किसी तक पहुंचाना है, सीधे हमें लिख भेजिए हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। एंजॉय कीजिए इसे एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन।

सुचित्रा का अगला मेल दोस्तों मेरे पास है और सुचित्रा कहती हैं कि सताक्षी, मैं इंडिया से सुचित्रा हूँ और आप सभी को, आपकी पूरी टीम को मेरा हाय नमस्कार। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने आप प्ले करते हैं, मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ। तो इंटरनेट का भी थैंक यू जिसने हमें आपसे कनेक्ट किया है, वरना कहाँ इतनी दूर के चैनल्स हम सुन पाते। हाँ सुचित्रा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सुचित्रा आगे लिखती है कि मैंने हाल ही में रिलेशनशिप को फील किया है, बाय कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप कहती हैं कि बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है किसी की मोहब्बत में पड़ना, किसी से प्यार होना, और इसीलिए जब आंखों की जुबां मैंने सीखी है बोलनी, तो मैं ऐसा ही एक गाना सुनना चाहती हूँ। प्लीज मेरे लिए प्ले कीजिएगा, प्यार से भरा एक खूबसूरत गाना है, आंखें भी होती है दिल की जुबां। सुचित्रा जी, बहुत खूबसूरत एहसास आप फील कर रही हैं इस वक्त, मोहब्बत का एहसास, इश्क का एहसास जिसे हम कहते हैं। और ईश्वर करे कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो इसी मोहब्बत से भरी रहे, महकती रहे। आंखें भी होती है दिल की जुबां, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना। और सच में जब मोहब्बत हो जाती है तो बात तो आंखों आंखों में ही होती है ना। तो ये आंखें जो है वो आपके दिल की बात जरूर कह रही होंगी, हम समझ सकते हैं। और हम समझे ना समझे, उन्हें समझना बहुत जरूरी है जिनसे ये आंखें बातें करती है। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में है ये गाना वैसे, और इसको अपने सुरों से सजाया है असरार अंसारी ने, और म्यूजिक है जतिन ललित का। तो इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना आपके लिए और हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो इश्क को फील कर रहे हैं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM के साथ। जी हाँ, रेडियो प्रसवानी पर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं फरमाइशी गीत। सताक्षी है आपके साथ और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस सफर में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है और उम्मीद करते हैं कि ये फरमाइशी गीतों का सफर जो है ये आपको जरूर पसंद आ रहा है। तो जनाब, अगर अभी तक आपने हमें अपनी मेल नहीं भेजी है, अपनी रिक्वेस्ट नहीं बताई है, तो हमें लिख भेजिए हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। वैसे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज पर आप फटाफट से जल्दी से जाकर लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट जो है वो तुरंत हमारा फोन जो है वो हमें क्लिक करके बता देता है कि भाई रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज पर किसी की रिक्वेस्ट तो आई है, है ना। तो फटाफट से हमें लिख भेजिए, हम प्ले करते हैं आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी की।

0: मेलबर्न से प्रेमानंद जी का अगला मेल है हमारे पास में। और प्रेमानंद जी, नमस्ते आपको और थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमें मेल करने के लिए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सताक्षी जी, मोहम्मद रफी साहब मेरे बड़े ही पसंदीदा गायक थे और उनकी आवाज में एक शरारत हुआ करती थी जब वो धर्मेंद्र जी के गाने गाया करते थे, मोहब्बत हुआ करती थी, शम्मी कपूर के गाने जब वो गाते थे रोमानियत हुआ करती थी। तो ऐसा ही एक गाना अभी आज मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म प्रतिज्ञा से, मैं जट यमला पगला दीवाना। रफी साहब की यादों को जरा ताजा कर दीजिए और ये गाना प्ले कर दीजिए। बिल्कुल प्रेमानंद जी, हम आपकी फरमाइश को सर आंखों पर रखते हुए रफी साहब की यादों को जरा झूम के ताजा करते हैं और धर्म जी की जो डांस परफॉर्मेंस है उसे भी याद करते हैं।
1: स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीत आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। जी हाँ, आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं हम जानते हैं, क्योंकि भाई जब अपनी फरमाइश का गाना लिस्ट में लगा हो, लाइन में लगा हो, तो फिर धड़कन कहती है कि किसी भी पल वो गाना प्ले हो सकता है। बिल्कुल होगा जी, बस देखना है कि अगली फरमाइश हम किसकी लेंगे, लेकिन उसके पहले आपकी धड़कनों को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए आइए सुनते हैं ये अगला ट्रैक। मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर फरमाइशी गीत, और बने रहिए आपके अपने उस सफर में जो आपकी ही धड़कनों से जुड़ा है और आपके ही पसंदीदा गीतों का सफर है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी फरमाइशी।

अब इसी से छोटू अंकल का है मेरे पास अगला मेल, और छोटू अंकल कह रहे हैं कि सताक्षी जितनी बार भी गाने अपने बज जाते हैं, प्ले हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है और एक नए गाने की फरमाइश आ जाती है। इस बार जरा सौतन की बेटी का गाना सुनवा दीजिएगा, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले आए है। छोटू अंकल बड़ा सैड सा आपने रिक्वेस्ट किया है, भाई क्या बात है, सब जिंदगी में ठीक ठाक तो है। आप जैसा कि कह रहे हैं कि एक नई इच्छा जो है जब जग जाती है, एक नया गाना रिक्वेस्ट करने का मन करता है, तो बहुत अच्छा मन करता है आपका। इसी बहाने आप हमसे कनेक्ट तो करते हैं और हमें पता तो चलता है कि आप हमें कितना एंजॉय कर रहे हैं। वेल, आपने सुनना चाहा है, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, लग रहा है कोई बिछड़ा प्यार आपको याद आ गया। वेल, सौतन की बेटी फिल्म का है ये ट्रैक, और वेदपाल ने इस सॉन्ग में म्यूजिक दिया है और लिरिक्स हैं सावन कुमार के। रेखा जितेंद्र स्क्रीन पर है, तो बस एंजॉय कीजिए और हमें आगे अपनी फरमाइशें भेजते जरूर रहिएगा।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: रेजी प्रस्तानी पर अपनी पसंद के गानों को इस वक्त आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं। ये गाने आप सुन रहे हैं मेरे साथ फरमाइशी गीतों में, और उम्मीद करते हैं कि ये गाने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबकी फरमाइशों को आप तक पहुंचा पाएं, और वो बातें जो आप कभी अपने आप से कहना चाहते हैं, कभी अपनों से कहना चाहते हैं, या वो गाने जो कभी आप खुद ही गुनगुनाना चाहते हैं, अपने लिए खासतौर से सुनना चाहते हैं, वो गाने हम आप तक पहुंचा सके। फिलहाल एक अगले गाने को मेरे साथ एंजॉय कीजिए, इसके उस पार देखते हैं कि अगली रिक्वेस्ट किसकी है। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

जिंदगी लम्हों को जोड़कर बनाई जा सकती है। बरसों की नहीं होती हासिल, तो वो लम्हे ही हैं, उसी में मुझे जिंदगी के आसार नजर आते हैं। भाई लम्हे ही तो हैं जिन्हें जीना जरूरी होता है। लम्हों को जोड़ जोड़ कर ही दिन बनते हैं और उसी से हमारी जिंदगी बुनी होती है। इसलिए हर लम्हे को सही तरीके से जीना बहुत जरूरी है। बस इसी ख्याल के साथ आगाज करते हैं कार्यक्रम कारवाएं गजल का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका रेडियो हमसफर निलय और आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो ब्रिस्वानी। इस महफिल का आगाज करते हैं, महफिल की शमा को जलाए रखिएगा इस गजल के साथ।

पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर, उसी हथेली पर घर बना लो कि घर वही है पनाह भी है, तुम्हारे हाथों में देखी थी एक लकीर अपनी भी। फिलहाल आपके साथ है आपका रेडियो हमसफर निलय, आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल रेडियो रिस्वानी पर। हाथों में उसकी लकीर होना जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। कितना अच्छा होता है ना जिन्हें हम चाहते हैं वो हमारे साथ हो, उनका हाथ हमारे हाथ में हो। कितना अच्छा होता है कि किसी का हाथ हाथ में ले लें और उसके दिल का हाल आप तक पहुंच जाए, बस उस हाथ की नरमी सारी बात कहते। कुछ ऐसे जज्बात आपके सामने रख रहा हूं इस शायरी के साथ, गौर फरमाइएगा। ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहीं से हैं जहां रास्ते नहीं होते। तेरा हाथ लूं हाथ में फिर ऐसा हो कि तेरे गम खुद ब खुद मुझ में उतर जाएं।

आपकी आंखों में कोई जुस्तजू है बोलती, सांस में लिपटी हुई सी आरजू है बोलती। कारवाई गजल की महफिल सजी हुई है, मैं हूं निलय। मोहब्बत, मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत में आंखें जुबां का काम करती हैं, झुकती हैं तो कुछ बता देती हैं, उठती हैं तो जैसे कुछ कहने के लिए। मोहब्बत भरी नजर में हर पल आरजू छिपी होती है, दर्द में भी ये आंखें ये नजर मोहब्बत जताना बताना भूलती नहीं है। दर्द और मोहब्बत की बात हो तो दिल की बात होना लाजमी है। दिल ही दिल में दर्द छुपाना आसान नहीं होता, नजर के दर्द को समझ पाना इतना आसान होता कहाँ है भाई। इस दिल और दर्द के रिश्ते की गुफ्तगू जारी रखेंगे, सुनते रहेगा आप रेडियो ब्रिस्वानी। मैं हूँ निलय आपके साथ।

ये गम क्या है? दिल की आदत है? नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो किसी के बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है? नहीं तो हाले दिल किसी को बताना मुमकिन नहीं हो पाता। तसव्वुर से किसी की परछाइयों का गहरा असर होता है। यादों के बिना जीना मुमकिन नहीं, पर उन यादों के साए से दूर जाना भी मुमकिन नहीं। यादों का दायरा कहने को तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें सारी दुनिया डूब जाए इतना दर्द होता है। जब वो चाहने वाला पलकों पर आंसुओं की लड़ियां छोड़ जाता है, तब किसी की सूरत नहीं भाती। आपका रेडियो हमसफर निले आपके साथ है, बना हुआ है और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, चांद लाख डूब जाए इतना होता है।

जाने कहां गया वो जो अभी यहां था, वो जो अभी यहां था वो कौन था, कहां था। लम्हा लम्हा जिंदगी गुजरती है, वो पल जो अभी यहां था अगर ढूंढने जाओगे तो वो लम्हा कहीं नहीं मिलेगा। लम्हे मुट्ठी में बंद रेत की तरह होते हैं, कब हाथ से फिसल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो अभी है अगले पल ही नहीं रहेगा, जो आज का वर्तमान है वो एक ही पल में बीत जाता है, बीता हुआ पल बन जाता है। अभी हम साथ हैं, ये पल अभी हमारा है, जी लें इसे, जी भर के जी लें, है ना। यही है जिंदगी का फलसफा। मैं हूं आपके साथ निले, आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो ब्रिस्वानी और ये कार्यक्रम है कारवाएं गजल। एक शेर अर्ज कर दूं, अब सुकून है तो भूलने में है, अब सुकून है तो भूलने में है, लेकिन उस शख्स को भुलाए कौन, दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, कौन दोहराए वो पुरानी बात, गम अभी सोया है जगाए कौन। निलय है आपके साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर और मैं आपके साथ हूँ, अपने दिल की बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल तक मेरी बात पहुँचती होगी। पर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम सबसे अपना दिल का दर्द साझा कर सकते हैं, कर पाते हैं? क्या हम सब एक जैसा भरोसा कर सकते हैं? विश्वास, भरोसा, ये ऐसे कांच की तरह होता है कि अगर वो टूटे तो फिर जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए शीशे में कभी पूरी तस्वीर नहीं बन पाती, है ना। कभी देखा है टूटे हुए आईने में अपना चेहरा? हजार टुकड़े हो जाते हैं आपके। फिलहाल तो इस महफिल में पेश खिदमत है अगली गजल आपके लिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए। ये नगमे ये गजलें सिर्फ आप ही के लिए हैं।

आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, देखिए आज याद आए कौन। ख्वातीनो हज़रात, आप सुन रहे हैं कारवाए गजल। याद आना और दिल उदास होना ये एक रिवायत की तरह, याद दोनों लम्हों की आती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। समंदर किनारे खड़े रहकर कभी आप आती जाती लहरों को देखिएगा, एक आती है दूसरी जाती है, यादें भी उसी तरह होती हैं। जब किसी की याद आने लगती है तो एक के बाद एक यादों की लहरें दिल में ऐसे उठती हैं और तूफान सा आ जाता है। और ऐसे में आंखों में नहीं हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।

0: पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: कारवाई

जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। खुशामदीद दोस्तों, किसी को निशानी देनी हो तो क्या देंगे आप? मेरी मानिए तो सबसे कीमती चीज दीजिए और वो है लम्हा, समय। गया हुआ समय वापस लौट कर आता नहीं, इसीलिए अगर किसी को तोहफा देना हो, निशानी देनी हो तो समय से बेहतर और कुछ नहीं है। मेरी बात ध्यान में रखिएगा, मैं जो पल आपके साथ बिताता हूँ, मेरी हर बात आपके दिल में एक याद बनाए, इसी उम्मीद के साथ आपके साथ रहता हूँ मैं। और अगली गजल भी पेश कर रहा हूँ, उससे मैं कुछ पा न सकूं ऐसी कहां उम्मीद थी, उससे मैं कुछ पा न सकूं ऐसी कहां उम्मीद थी, गम भी वो शायद बराए मेहरबानी दे गया।

मैं प्यासा रहा पर उसने इतना तो किया, मेरी पलकों की कतारों को वो पानी दे गया। कौन करता है किसी के लिए इतना, जाते जाते भी उसने मेरे लिए इतना कर दिया। मेरी पलकों को पानी की कतारें दे गया। दर्द जो आंखों से बूंद बन के गिरता रहा। आंसू दिल से निकलते हैं जब दिल टूटता है, तो भले आंखें रोती हुई दिखती हूं पर सबसे ज्यादा तकलीफ ये यहां दिल में होती है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, और मुझको एक कश्ती बादबानी दे गया।

मिसाल इसकी कहां है जमाने में के सारे खोने के गम पाए हमने पाने में, वो शक्ल पिघली तो हर शय में ढल गई जैसे, अजीब बात हुई है उसे भुलाने में। जो मुंतजर न मिला तो वो हम हैं शर्मिंदा, जो मुंतजर न मिला वो तो हम हैं शर्मिंदा कि हमने देर लगा दी पलट के आने में। खुशामदीद हजरत, मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निले, और किसी को जाते हुए देखना जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है, पर मैं तो यही कहूंगा कि जाते हुए पलटकर दर्द भरी आंखों से वो देखे तो वो दर्द शायद सबसे बड़ा दर्द होता है, क्योंकि उसे एक लम्हे में ऐसा एहसास होता है कि आवाज देते तो शायद वो रुक जाता, शायद वो मेरा हो जाता। गजलों की इस महफिल में अगली पेशकश आपके नाम कर रहा हूं, क्योंकि दिल कब सीधी राह चला है, राह मुड़े तो मुड़ जाने दो।

समझ लिया था कभी एक शराब को दरिया, पर एक सुकून था हमको फरीब खाने में। क्या बात है, क्या बात है। जब इस शो के लिए कुछ ऐसा तलाश कर रहा था, वैसे तो बहुत से शायरों की बात दिल को छू जाती है, पर ये जो दो लाइंस हैं वो पढ़ी और लगा कि ये आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। समझ लिया था किसी शराब को दरिया, शराब मतलब मरीचिका, ओएसिस, रेगिस्तान में जब पानी न होने पर पानी का आभास होता है ना, उसको कहते हैं। पर एक सुकून था हमको फरेब खाने में। जब आपको पता हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो आपको धोखा देने वाला है, तब उस झूठ को सुनने में भी एक अलग ही मजा आता है। आपको पता होता है कि धोखा मिलने वाला है। एक सच जो आपके सामने है, फिर भी फिलहाल तो आपका सच ये है कि मैं निलय हूं और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिसवानी पर। सुनते रहिए।

अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। जाते जाते वो दर्द की एक कहानी दे गया, जब कोई रूठ जाता है, बिछड़ जाता है और फिर उसके वापस आने की सूरत सी बनने लगे, तब एक बार तो वाकई ऐसा लगता है कि अब जो आना वापस जाने के लिए मत आना, रूठने के लिए मत आना, एहसान जताने के लिए मत आना, रस्म निभाने के लिए मत आना। अब की बार आना तो ऐसे आना कि जैसे कभी जुदा हुए ही नहीं थे। अब तुम आना जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कोई, अब तुम आना जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कोई, मुझसे मिलने की अगर तुमको भी चाहत है कोई, तुम कोई रस्म निभाने के लिए मत आना। अपने रेडियो हम सफर निले के साथ हैं आप, और आपका और हमारा ये साथ कुछ ही देर का और है, लेकिन इस साथ को यादगार बना लेते हैं, इन पलों को जी लेते हैं। आइए कुछ और नगमे, कुछ और गजलें सुनते हैं।

आप भी आइए, हमको भी बुलाते रहिए। आप भी आइए, हमको भी बुलाते रहिए। दोस्ती जुर्म नहीं, दोस्त बनाते रहिए। जहर पी जाइए और बांटिए अमृत सबको। जख्म भी खाइए और गीत भी गाते रहिए। किसी से दूर जाते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो बिछड़ने का गम नहीं रहता, है ना। उम्मीद करता हूँ आपके भी चेहरे की मुस्कान बरकरार रहेगी। कुछ खास अंदाज आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इन बातों को जब भी गुनगुनाइएगा, बस मुझे जरूर याद कीजिएगा। दिल के किसी कोने में मेरी याद को संजो कर रख लीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपका रेडियो हमसफर निलय आपसे इजाजत चाहता है। कारवाई गजल अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, तो अभी जा रहा हूं, लेकिन अगले इतवार को जरूर आपसे मिलूंगा। सुनते रहेगा रेडियो बरसवानी। जाते जाते ये नजराना आपके लिए। शक्ल तो आपके भी जहन में होगी कोई, शक्ल तो आपके भी जहन में होगी कोई, कभी बन जाएगी तस्वीर बनाते रहिए। खुदा हाफिज़।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कोई से जो परसो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Yeah.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी दिस इज आलिया।
5: हाय मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
6: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ai ai a suco, suco!
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: 보관.
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप हैं इस नई सुबह आपकी सताक्षी के साथ, और आज से एक नए सफर की, आज के दिन के साथ नई शुरुआत, जीवन आधार। जी हाँ, इसी कार्यक्रम में आज से होगी आपसे मुलाकात। जीवन का आधार वो ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, ईसा मसीह, आप उसे जो भी नाम दे दे वो है, और आपके जीवन की नैया को पार लगाने वाला भी वही है। तो चलिए उस खुदा की, उस ईश्वर की, उस परम पिता परमेश्वर की, उस सच्चे बादशाह की करते हैं आज एक बार फिर से वंदना, जीवन आधार में सताक्षी के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज भगवान से है। तुम ईसा कहो वो वाहे गुरु, हम सब की अरज अल्लाह से है। कितनी सच बात है ना दोस्तों, हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म को मानने के पीछे है एक ही मकसद, अपनी प्रार्थना को उस शक्ति तक पहुंचाना जो हमारे हिसाब से इस संसार का निर्माण कर रही है, उसे चला रही है। और उसी शक्ति की, उसी सर्वशक्तिमान की हम प्रार्थना करते हैं हर सुबह अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग नामों से। लेकिन नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, आपकी प्रार्थना एक ही है, उस शक्ति से है जो ये दुनिया चला रही है, और उसी शक्ति को समर्पित है यह लगाना। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और इस आधार में, जीवन के आधार में हम अपने ही जीवन को ढूंढने की आज इस नई सुबह एक कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कोशिश जारी रहेगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार, और इस सफर में आज से हर रोज आपकी हम सफर सताक्षी आपका साथ निभाती रहेगी। जब तक आप उस ईश्वर को मैं के साथ जोड़ते हैं, जब तक आप में मैं जिंदा रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें उस शक्ति को पा नहीं सकते, और कितना भी आप दुआ मांग लें, आप प्रार्थना कर लें, आप अरदास लगा लें, लेकिन आप अपनी आवाज उस तक पहुंचा नहीं सकते हैं। उसकी आवाज सुनने का और अपनी आवाज उस तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, अपने मैं को मिटा देना। तो मिटा दीजिए अपने मैं को और ढूंढ लीजिए उस सर्वशक्तिमान को। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर जीवन का आधार, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। और हम इस जीवन आधार के माध्यम से जीवन के ही सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए गुरुवाणी के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर हमारे साथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजुनी सभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक होसे भी सच, सोचे सोचे ना होवे जो सोची लाख बार छुपे छुप ना होवे। यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सच है, वही सबको बनाने वाला है, उसकी कोई मूरत नहीं है, वो किसी का दुश्मन नहीं है, जन्म मरण से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है। ऐसे ही परमात्मा को गुरु नानक जी ने अकाल पुरख कहा है, जिसकी शरण में गुरु के बिना जाना संभव नहीं है। आइए उसी ईश्वर को नमन करते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये था आज हमारा आपका आज की सुबह साथ। कल इसी साथ को लेकर आगे भी साथ साथ चलेंगे। और अपना जो रिश्ता है वो ईश्वर से जोड़े रखिए, उस शक्ति को जिसमें भी आप जिस भी नाम से माने विश्वास करते रहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको थामा है, आपके अपनों को थामा है। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, उदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन के साथ, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है चानी का सफर। आशा करती हूँ ये सफर आप सभी का बहुत ही बेहतरीन होगा, और सफर में आप करेंगे एंजॉय, क्योंकि जानेंगे आज बहुत कुछ खास। वो क्या है बातें जानेंगे इस गीत के बाद। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

यू आर लिस्निंग रेडियो ब्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन के साथ। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ खबरों के साथ। और आज की खबर है, टैंक कंपनियों के मुनाफे और शांति वार्ताओं की उम्मीद से अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है। अजीत यागी के अनुसार इससे भारतीय बाजार और रुपए पर दबाव बढ़ा है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक निवेशक अब सुरक्षा के लिए सोने की ओर रुख कर रहे हैं। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आईएसए के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ इस प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुआ क्रूज हादसा महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का सबसे बड़ा नतीजा बनकर सामने आया है। बीते शुक्रवार को जब रेस्क्यू टीम ने पानी की गहराई से 5 और शवों को बाहर निकाला तो मौतों का कुल आंकड़ा जो है 9 तक पहुंच गया, जबकि 4 लोग अब भी लापता है। लेकिन प्रशासन के इस लापरवाही का एक नमूना कलेजा चीर देने वाला है। आपको बता दें, जब क्रूज के भीतर काल बनकर पानी भर रहा था तब क्रूज के कर्मचारी पागलों की तरह सील बंद पन्नियों को फाड़कर लाइफ जैकेट निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मतलब कि क्रूज मेंबर चमचमाती हुई सील पैक पन्नियों से लाइफ जैकेट को बाहर निकाल रहे थे। वह सुरक्षा उपकरण जिन्हें की यात्रियों के शरीर पर होना चाहिए था, हादसे के आखिरी पलों तक प्लास्टिक की पन्नियों में कैद रहा और लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए चांदनी के सफर प्रोग्राम में।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली खबर। तुर्की ने बनाया है दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन जो कि बिना जीपीएस नेविगेट करेगा, वीआईपी लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। तुर्की की मशहूर ड्रोन कंपनी बेकार ने हाल ही में अपना नया एआई पावर्ड कमिकाजे ड्रोन यानी कि मिज़राक पेश किया है। मिज़राक का मतलब तीर या भाला होता है। ये लंबी दूरी का लाइट रिंग मुनिशन है जो कि हवा में घूम घूम कर लक्ष्य की तलाश करता है, फिर हमला कर देता है। और इस ड्रोन की रेंज जो है 1000 किलोमीटर से ज्यादा होती है और ये 7 घंटे तक हवा में रह सकता है। आपको बता दें कि 40 किलो तक का वॉरहिड ले जा सकता है और ये साहा 2026 यानी कि SAHA 2026 प्रदर्शनी में पहली बार जनता के सामने आएगा जो कि 5 से 9 मई 2026 तक इस्तांबुल में होगी। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आईएसए के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

0: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ी हमारी स्किन की। जी हाँ, स्किन का डेली का एक टिप तो बनता ही है और आज का टिप्स ये है कि जब हमारी स्किन जो होती है वो ढीली हो जाती है और पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से डल हो जाती है और बिल्कुल हमें रिंकल फ्री नहीं लगती है, रिंकल्स लगते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं जिसको अलसी भी कहते हैं। उसको आप एक चम्मच लीजिएगा पैन में और उसमें आप थोड़ा सा वाटर डाल दें, यानी कि हाफ ग्लास डाल सकते हो। उसके बाद आपने उसको अच्छे से गैस में रखना है और उसको आपने हिलाते रहना है मिक्स, जब तक वो जेली फॉर्म में ना आ जाए। जब वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे आपने बंद कर देनी है गैस और ठंडे होने पर आपने उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा डालकर आपने उसको मिक्स करना है और उसको आपने पूरे फेस पर लगाना है। आप इसे रेगुलर भी कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर करना है तो रेगुलर में आप राइस फ्लोर मत डालिएगा। अगर आपने राइस फ्लोर डालकर करना है तो वो आप हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं। और वैसे आप अपनी स्किन में फ्लैक्सीड का जेल जो है वो आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी, ब्राइट भी हो जाएगी और शाइन भी आएगी। तो ये करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंस्टेंट। तो ये था आज का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा स्किन टिप्स, जो आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

रेडियो ब्रिस्वानी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी ने जानी है खबरें भी और बहुत सारी बातें हमने की है अपने इस प्रोग्राम यानी कि जानने के सफर प्रोग्राम में। तो इसी के साथ जी वक्त हो चला है प्रोग्राम को एंड करने का। आपके साथ फिर हम बातचीत करेंगे कल। अभी के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Tanvire, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji no on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्फानी 1701 एमआई। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और नहीं, यूक्रेन ने रूसी शैडो क्लीट के दो टैंकरों पर किया हमला, 300 से अधिक ड्रोन दागे। यूक्रेन ने रूस के बंदरगाह के पास उसके शैडो फील्ड के दो टैंकरों को निशाना बनाया है। ये हमला यूक्रेन द्वारा रूसी तेल बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमलों की बढ़ती श्रृंखला का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण सीज फायर की संभावनाएं फिलहाल धुंधली होती नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट के सहयोगियों को 8.6 अरब डॉलर के हथियार बेचेगा अमेरिका, ट्रंप प्रशासन ने दी मंजूरी। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव के बीच मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों को 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। ये फैसला तब लिया गया जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आपातकालीन परिस्थितियों का हवाला देते हुए कांग्रेस की पूर्व समीक्षा के बिना ही हथियार हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसराइल की चेतावनी और खाली होने लगे लेबनान के गांव, सीज फायर के बाद भी तनाव। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है, जबकि हिजबुल्ला के साथ युद्ध विराम लागू है। लगातार हमलों और तनाव के बीच लेबनान के राष्ट्रपति ने शांति वार्ता से पहले इसराइल से युद्ध विराम का पालन करने को कहा है। इजरायली सेना के अरब भाषी प्रवक्ता ने बताया कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत घर छोड़कर कम से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाकों में जाना चाहिए। ये चेतावनी 10 से अधिक गांवों और कस्बों पर लागू होती है, जिनमें वो जिले शामिल हैं जो लितानी नदी के उत्तर में हैं, जबकि इजरायली सेना की तैनाती नदी के दक्षिण में है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, 1 घंटे बंद रहा रनवे। चेन्नई एयरपोर्ट पर शारजाह से आई एयर अरेबिया की फ्लाइट से एक यात्री इमरजेंसी एग्जिट खोलकर चलती फ्लाइट से कूद गया। ये घटना के कारण मुख्य रनवे 1 घंटे के लिए बंद रहा। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में घबराहट फैल गई और तुरंत सिक्योरिटी टीम बुलाई गई। असम में मिला दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का बम, सेना ने सुरक्षित रूप से किया निष्क्रिय। असम के तिनसुकिया जिले में टेपपानी इलाके में द्वितीय विश्व युद्ध का एक बिना फटा बम रिहायशी क्षेत्र में मिला है। भारतीय सेना की बम निरोधक टीम ने सुरक्षित रूप से उसे निष्क्रिय कर दिया है। लगभग 12 इंच लंबा और 6 इंच व्यास वाला जंग लगा बम एक घनी आबादी वाले इलाके में मिला था। इसके बाद भारतीय सेना ने तुरंत विशेष बम निरोधक टीम को मौके पर भेजा। इलाके को सील कर दिया गया और बम को सुरक्षित रूप से हटाकर निष्क्रिय करने से पहले वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, ताकि अगर बम फटे तो किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्फानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि रेड बैंक प्लाइंस इप्सविच के नितिन और अरुण के बेटी सोनम चंद के देहांत शनिवार 2 मई को प्रिंस एल्फ्रेड हॉस्पिटल सिडनी में हो गई। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अरुण जी को 04039622208 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी

on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।

सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और चलो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं अकेला हूँ क्योंकि अमिता छुट्टी पर है, और आप लोग भी बहुत से लोग छुट्टी पर होंगे। आज मंडे हैं। और चलो देखिए, सबसे पहले फिजी का समाचार सुनते हैं। फिजी में कहा गया है कि सिक्योरिटी क्रैकडाउन है, इम्पॉसिबल स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहा गया है। Fiji is facing a major law and order issue after the death of alleged underworld figure Jone Vakarisi while in military custody. Prime Minister Sithibeni Rabuka says the government is considering a state of emergency to strengthen police military operations against drug syndicates. This has raised debate about civil liberties and Fiji's democratic images. Why it matters? Because drug trafficking through the Pacific is increasing. Fiji is becoming a transit point for Australia and New Zealand markets. Tourism could be affected if emergency powers are imposed. वैसे तो टूरिज्म, फिजी रिकॉर्डेड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट मार्च एवर फॉर टूरिज्म विद ओवर 71,000 इंटरनेशनल अराइवल्स। टूरिज्म रिमेन्स फिजीज बिगेस्ट इकोनॉमी पिलर एंड इज हेल्पिंग रिकवरी फ्रॉम पास्ट साइक्लोन एंड ग्लोबल डाउनटर्न्स। बिग सोर्सेज ऑफ मार्केट कहाँ से ज़्यादा लोग जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का भी पैसा बड़ा है दोस्तों। और वेदर अलर्ट है फिजी में। फिजी हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड अलर्ट्स आर एक्टिव इन पार्ट्स ऑफ फिजी। क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शंस रिमेन अ कॉन्स्टेंट कंसर्न फॉर फार्मिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन कंसर्न्स फ्लडिंग, क्रॉप डैमेज और रोड डिस्ट्रप्शन कहा गया है। और पॉलिटिक्स, 2026 इलेक्शन स्टिल ऑन ट्रैक। रबुका सेज फिजी 2026 जनरल इलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसीड इवन अमीड सिक्योरिटी कंसर्न्स। दिस विल बी अ मेजर पॉलिटिकल टेस्ट। तो ये रहा कुछ फिजी पर समाचार दोस्तों, फिजी का समाचार। और हम देखते हैं इधर तो हमारा वेदर का क्या हाल है दोस्तों। जी हाँ, आज के लिए कहा गया है कि 19 and 20 रहेगा, 90% चांस ऑफ रेन। चांस ऑफ रेन डजंट मीन कि 90% बरसता रहेगा। ट्यूजडे के लिए कहा गया, यानी कल के लिए 70% चांस 1 to 5 millimeters। वेंसडे को 19 and 25 रहेगा, 70% चांस ऑफ रेन कहा गया है। थर्सडे को 18 and 27 रहेगा, 30% चांस ऑफ रेन। और फ्राइडे को कहा गया है कि 59% चांस ऑफ रेन, 13 and 23 रहेगा। और आने वाले शनिवार को 12 and 25 रहेगा और 5% चांस ऑफ रेन। और संडे को 14 and 24 रहेगा, 70% चांस ऑफ रेन। अगले मंडे को 16 and 24, 90% चांस ऑफ रेन। और फिर ट्यूसडे को, अगले ट्यूसडे को 15 and 24 रहेगा और 90% चांस ऑफ रेन। वेंसडे को 16 and 24, 90% चांस ऑफ रेन। रास्ता पर अभी कुछ नहीं आया है दोस्तों, लुक्स लाइक नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। चलो फिर से मैं चेक करता हूँ और क्या हो रहा है रास्ते पर। जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया दोस्तों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम कुछ गीत के साथ। और अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ डू सेंड इट टू मी। ओके, और कुछ देर में हम बातें करेंगे दोस्तों। जावेद अली का जो शो था, आपको कैसा लगा था?

और आज का जो गीत है कुछ मिला जुला गीत है दोस्तों। आज मैं अपने थीम पे नहीं रहूँगा क्योंकि इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है और मैं थोड़ा हो गया हूँ लेजी। ठीक है, ये काम अमिता का है, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम और बस यही उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। कैसा था शो दोस्तों, आपको कैसे लगा था? बहुत बहुत प्यारा शो था दोस्तों, मैंने बहुत शो देखा, लेकिन जावेद अली का जो शो था दोस्तों, मे बी जावेद अली इज़ अ वेरी क्वाइट पर्सन, अगर मैं कहूँ तो बहुत से जो सिंगर्स आए हैं, आई वुड पुट जावेद अली ऑन वन ऑफ द टॉप वंस। जिस तरह से उन्होंने ओल्ड न्यू गाना गाया और जिस तरह से उन्होंने जो क्योंकि ही इज़ अ ट्रेंड सिंगर, लेट्स फेस इट, ही इज़ अ वेरी वेरी ट्रेंड सिंगर, और जिस तरह से वो राग और सब कर रहा था दोस्तों, आई विल नॉट थिंक कोई उतना सिंगर नहीं कर पाएगा। अगर आप गए थे देखने के लिए, आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, आप प्लीज़ कॉल करके बताएं कि क्या मेरा जो एनालिसिस है ये सही है या कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं और पर भी जाकर देखेंगे, अभी मेरे ख्याल से सिडनी वगैरह भी जाएंगे, अगर आप सुन रहे हैं दोस्तों, बिलीव मी, डू गो एंड वॉच हिम, यू विल नेवर थैंक मी इनफ। जो लोग नहीं गए थे देखने, आप लोग ने बहुत मिस कर दिए। मैं जानता हूँ कमिटमेंट बहुत हुआ करता है और पहले से कमिटमेंट हो जाया करता है, एंड यू हैव टू कीप योर कमिटमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वास्तव में ये जो जो शो था बहुत बढ़िया था दोस्तों, रियली आई रियली थरली एंजॉयड इट, एक्सक्यूज मी। और सबसे पहली बात है कि शो बिल्कुल टाइम से शुरू हुआ था, राइट ऑन द डॉट। आजकल जब लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ, ये नहीं कि सिंगर्स करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी लोग देर से पहुंचते हैं, ऑडियंस पूरा होता नहीं है, लेकिन तो लोग थोड़ा डिफे कर देते हैं, बट जब शो शुरू एकदम समय से होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आर्टिस्ट है वो बड़े डिसिप्लिन है, वो चाहते नो मैटर व्हाट यू स्टार्ट ऑन ऑन टाइम, एंड ऐसा ही हुआ था दोस्तों। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि अगर आप वॉच किए होंगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा। और इस बार कुमार सानू और अलका याग्निक से इस गीत को आप सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, बड़ा प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास रेस्टोरेंट वगैरह है तो आपको एक सुझाव मैं देना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल आपको क्या करना है, आपका जो भोजन है ना उसको बहुत कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, यानी मेजरमेंट या जैसे भी आप भोजन पकाते हो, ताकि जब एक व्यक्ति आपका भोजन पसंद करता है तो वो जब लौट कर जाता है ही इज़ एक्सपेक्टिंग द सेम फूड। अगर आप इसमें वेरियंस हो जाए या डिफरेंट कुक बना रहा हो या जो कुछ भी हो, फिर वे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, दे मे नॉट गो बैक अगेन, ठीक है। तो ये बात याद रखना। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मैकडोनल्ड स्टार्टेड इन 1940 और वो पॉपुलर हुए थे 1970 में थ्रू आउट अमेरिका एंड देन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जबकि वे पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं अभी बेगा किंग या क्या बोलते हैं हंग्री जैक एक ही कंपनी है और वेंडीज, इनका शॉप्स बंद हो रहे हैं दोस्तों और मैकडोनल्ड और आगे बढ़ रहे हैं। और सीक्रेट क्या है, उन्होंने कहा मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी, हमारा खाना हमेशा सेम होता है सभी जगह, और राउंड द वर्ल्ड जब जाएंगे तो भोजन हमारा सेम रहता है, इसीलिए दैट इज़ आवर सक्सेस। तो चलो, अगर जितने भी लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, आपको ये सुझाव मैं देता हूँ कि हमेशा कंसिस्टेंट रहे और खाना आपका भोजन हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, और गीत का नाम भी है खूबसूरत, उदित नारायण ने गाए हैं गीत को।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें। मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
4: वेडिंग एनिवर्सरी है तो हैव अ लवली वेडिंग एनिवर्सरी। जो कुछ भी है, अगर आप क्वींसलैंड में हैं तो आज आप छुट्टी पर भी हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलिए एंजॉय योर डे। और एक बहुत खूबसूरत सा गीत है दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत। उम्मीद है इस गीत को आप पसंद करेंगे। पुराना गीत है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, मैंने सोचा ना था और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके बॉडी में इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, यानी हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में इतना बैक्टीरिया होता है कि उसका जो टोटल काउंट है उसे कहा गया है कि हमारे जो ह्यूमन सेल्स बॉडी में हमारे ह्यूमन सेल्स के बराबर ही होते हैं। कैसे ये लोग कैसे इसको फाइंड आउट किए होंगे, सोचने वाली बात है दोस्तों। और मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजबानी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान। देखिए जो जो इंडिया में जो अभी रिसेंट क्रूज बोट ट्रेजेडी हुआ है दोस्तों, हुई है वो बारगी डैम के पास हुई है थी, जो मध्य प्रदेश में। ये एक टूरिस्ट क्रूज बोट थी जो नर्मदा रीवा में घूम रही थी। बोट में कोई 40 लोग थे, उससे ज़्यादा लोग थे। कह रहे हैं कि अचानक तेज़ हवा और मौसम खराब होने की वजह से बोट का बैलेंस जो था दोस्तों वे बिगड़ गया और वो पलट गई, कैप्साइज्ड हो गई दोस्तों। और इस एक्सीडेंट में 13 लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग पानी में गिर गए, बहुत से लोग पानी में गिर गए। रेस्क्यू टीम्स ने बहुत लोगों को बचाया लेकिन कुछ लोग लोअर डेक में फंस गए थे। तो दोस्तों ये बहुत अफसोस की बात है। सबसे दुख की बात है ये थी कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को पकड़े हुए मिली। ये रेस्क्यू टीम के लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट था। कैन यू बिलीव दैट। अभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या बोट ओवरक्राउडेड थी, क्या सबको लाइफ जैकेट दिया गया था, क्या वेदर वार्निंग के बाद भी बोट चलाई गई। तो ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन होगा दोस्तों। तो लेकिन बहुत दुखद बात है दोस्तों। और वो पिक्चर मैंने भी देखा माँ और बेटे के साथ जो, क्या बोलूँ मैं भाई, मौत हमको अपना जगह लेकर जाती है ना। खैर, नंबर है 04-3003-1701। अगर आप कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं दोस्तों, आप आ सकते हैं। ठीक है, यू कैन कॉल मी। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान।

और देखिए दोस्तों, दुनिया में क्या हो रहा है, और माफी चाहता हूँ दोस्तों, दुनिया में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट टेंशन फिर बढ़ रही है दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जो शिपिंग और ऑयल सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ गया है, और ये एरिया वर्ल्ड ऑयल सप्लाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे आप सब जानते हैं। इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स भी अलर्ट है कि यहाँ पर और क्या होगा। ईरान पे स्टॉक्स अभी अनसर्टेन है दोस्तों। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो पीस प्रपोजल पर बात चल रही है, लेकिन अभी क्लियर अग्रीमेंट नहीं हुआ, रीजन में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो ग्रोथ मोड पर है, और यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ने वार्निंग दी है कि 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ग्रोथ प्रेशर में रह सक वर्ल्ड प्रेशर में रह सकता है ड्यू टू इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण। और पैसिफिक कंट्रीज फ्यूल शॉर्टेज को लेकर कंसर्न है। पैसिफिक रीजन के लीडर्स इमरजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूल शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन प्रेशर यहाँ पर जो है बढ़ रहा है। ठीक है। और बेबीज के लिए मलेरिया मेडिसिन अप्रूव किया गया है, दुनिया का पहला मलेरिया ड्रग फॉर बेबीज अप्रूव हुआ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ा स्टेप माना जा रहा है दोस्तों। आप जानते हैं ना, ये जो कैनेडी जूनिया जो है, इन्होंने ये रोका था, क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, और इसी के कारण वहाँ पर काफ़ी मलेरिया फैल गया है। और अभी सुनने में आया कि ना, पीपल आर अगेंस्ट हिम जो ये रोक रहा है सभी तरह का, जो ये क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। पीपल आर नाउ टर्निंग अगेंस्ट दैट बिकॉज कई सालों से ये इसको दिया गया है। आपको लगा होगा, मुझे भी लगा, कुछ नहीं, अभी जी रहा हूँ मैं, फिर भी अभी जीने का और भी इंटेंशन है थोड़ा दोस्तों। ये कुछ नहीं हुआ है, और लेकिन मलेरिया ये सबको अवॉइड किया गया है। खैर चलिए, अगला जो गीत है कुमार सानू और जावेद अख्तर का लिखा हुआ, और आपको पता चल गया था कौन सा गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

देखिए दोस्तों, किड सुसाइड जो है, जो हमारे यंगस्टर्स का ज़्यादा होने लगा है, और मैं अक्सर एक जगह जाया करता हूँ दोस्तों किसी कारण, और वहाँ पर मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, और ये लोग ज़्यादा कर यंगस्टर्स जो है, इनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। कभी कभी कुछ उनका सपोर्ट भी मैं देता हूँ यहाँ पर। और ज़्यादातर मैं पाया हूँ कि अगर ये घर में फाउंडेशन सॉलिड हो तो बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन ये जितने बच्चे मुझे मिले हैं ये सब डिवोर्सीज यानी डिवोर्स्ड फैमिली से हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो माँ बाप को जानते नहीं है और ना जानना चाहते हैं, और इनका जो मेंटल स्टेट होता है ये हमेशा के लिए इंटॉक्सिकेटेड होता है दोस्तों। मुझे मालूम नहीं, शायद यही लोग हैं जो इधर उधर जाकर पैसा चोरी करते होंगे, जो कुछ करते होंगे टू सपोर्ट देट हैबिट, और ये जो नंबर है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, ऐसे क्यों है? क्योंकि लोग शादी कर लेते हैं, शादी का मतलब तो गया, कमिटमेंट तो अब और बहुत रहा नहीं गया है दोस्तों, बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर ये बच्चे, आई डोंट ब्लेम दिस किड्स, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कुछ प्यार नहीं मिलता, और आप चाहे जो कुछ कहो दोस्तों, मैं फेस्टन बता रहा हूँ, मैं बहुत समय से इनके साथ में टाइम बिताता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये इनके साथ क्या क्या होता है। कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं शायद रेडियो पर बोल भी नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत दुखित बात है दोस्तों, एंड दिस इज़ ऑन द राइज, सो आई डोंट नो इसको कैसे हल कर सकते हैं दोस्तों। खैर चलो इस गीत को सुनते हैं।

उम्मीद है दोस्तों, ये जो गीत मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, मैं अकेला आज सोल ट्रेवल कर रहा हूँ. सोल नहीं, अकेला नहीं, आप लोग तो साथ में हैं, लेकिन मेरी जो को होस्ट है वो काफ़ी गाना लेकर आती हैं. और तो आज थोड़ा मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यू नो दैट. अगर आप मेरे काम को आसान करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं मेरे पास अपना रिक्वेस्ट को भेजे. और शोभा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, आई रियली अप्रिशिएट दैट. और आपने भी डिस्कस किया मेरे साथ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल. थैंक यू सो मच. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक बार फिर किशोर कुमार से आप सुनेंगे. कौन सा गीत है दोस्तों? एक बहुत प्यारा सा गीत है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या ये.

0: और दोस्तों, तुमने जो एहसान किया है,
1: अरे
0: ठीक है, मुझ पर, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। क्या आपको पता हो गया कौन सा गीत होगा दोस्तों? कोशिश करिए, चलो सुनवा देता हूँ, ठीक है?

एहसान तेरा होगा मुझ पर। देखिए दोस्तों, जब गीत को गाया जाता है, जब फीलिंग डालकर गाया जाता है, जब गाने के वक्त अपने आप को खो देते हैं, यू गो इनटू दैट कैरेक्टर, उसका जो मीनिंग, उसका जो मजा कुछ और है दोस्तों। ऐसे मुझे सुनने में मिला और बात भी सही है। और जी हाँ, और चलिए अगला जो गीत है, अब कुछ पुराने गीत की ओर हम चले गए हैं, और अगला जो गीत है भी रफ़ी साहब का गाया हुआ है, और जावेद जी ने गाए थे इस गीत को, बहुत क्या बताऊँ मैं, मज़ा आ गया था दोस्तों। चलो सुनते हैं।

लिखे जो खत तुझे अभी आपने सुना दोस्तों, और रफी साहब तो कुछ गाना सुन रहे हैं। अगला जो गीत है दोस्तों, ये भी बड़ा प्यारा सा गीत है, फूलों वाली देखने वाली जैसी एक लड़की के लिए गाना है। जी हाँ, एक बड़ा रोमांटिक गाना है, थोड़ा प्लेफुल गाना भी है। इसमें जो गीत है इसमें ये एडमाया कर रहा है, लड़की को एडमाया कर रहा है एक फूल के साथ। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा आप कौन सा गाना है। रफ़ी साहब का गाना गाया हुआ गीत है दोस्तों, और कौन सा गीत है, एक गुलबदन।

और ये गाना मैंने बजाया था उन लोगों के लिए जो फूल जैसा नाजुक और खूबसूरत हो, यानी कि आप सबके लिए। जी चलिए, बहुत आज का जो मूड ऐसा कुछ बना हुआ है दोस्तों, उम्मीद है आप पसंद कर रहे होंगे। और 28 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
7: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
6: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 32737। बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
6: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365।

और दोस्तों इस समय 20 मिनट रह गए हैं 9 बजने में, हमारा साथ 9 बजे तक रहेगा और फिर उसके बाद में आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे। देखिए सताक्षी, फिर 11 बजे से आप संदेश के साथ हो जाएंगे पंजाबी प्रोग्राम, और फिर 3 बजे से निविया के साथ आप कार्यक्रम सुनेंगे, और इस बार लता जी और किशोर कुमार से आप सुनेंगे। जी हाँ, क्या यही प्यार है।

और देखिए दोस्तों, अगर आपके घर के पास ओरेगनो है या ओरेगानो जैसे भी आप कहो, अगर प्लांट है, ये बहुत बढ़िया प्लांट है दोस्तों। ये मेडिसिनल भी है और साथ साथ में कहा गया है कि अगर ये आप बोएंगे ना, तो आपके क्या बोलते हैं यार्ड में सांप वगैरह नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कहा गया है। खैर चलिए इस गीत को सुनते हैं, समय कम हो रहा है। दर्द दिल दर्द जिगर।

दोस्तों अभी आपने बहुत प्यारा गाना सुना और जावेद ने इस गीत को गाया था, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा था। खैर चलो दोस्तों, कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए हैं और आप सभी ने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन भूलना मत, इस कार्यक्रम के बाद में आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे और कल मैं अकेला नहीं रहूंगा, कल अमिता भी साथ में रहेंगी, ठीक है। तो चलो इस गीत के साथ हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखेगा। हे वो लवली लवली, जबकि दो दिल मिल रहे हैं, हम तो बिछड़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन कल फिर हम दो दिल मिलेंगे आपको, ठीक है। नमस्कार, खुदा हाफिज़।

गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस बेहतरीन गीत के बाद, सुबह की इस बेहतरीन शुरुआत के, इस बेहतरीन आगाज के बाद सताक्षी आपको कहती है गुड मॉर्निंग रेडियो पिस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ, मैं सताक्षी लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। सुबह की ताजगी, खूबसूरत मौसम, हर तरफ खुशियाँ, एक नई उम्मीद और इट हैपेंस पर सताक्षी और आप, रेडियो प्रस्वानी जो है ये हम दोनों को रोज मिलाता है ना। हम बहुत सारी दुआएं देंगे इसे, ये फले फूले और तरक्की करे, ताकि हम और आप यूं ही मिलते रहें। रेडियो प्रस्वानी की वजह से तो हम और आप हैं। तो चलिए, रेडियो प्रस्वानी और उसकी पूरी टीम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आप मुझे भी कर सकते हैं, भाई मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ। हाँ, तो आपके साथ हूँ तो क्या हुआ, मतलब हिस्सा तो रेडियो प्रस्वानी का ही हूँ ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी खुशी के साथ, इसी बेहतरीन आगाज के साथ, अच्छे अच्छे लम्हों और अच्छी यादों के साथ आज के सुबह की इस दिन का वेलकम करते हैं मिलकर साथ में। रेडियो प्रस्वानी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस। इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ेंगे सफर में आगे।

वेल फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, शुरुआत करें, विश करते हैं उनको जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास, क्योंकि आज हैं वो बजे बेबीज। सो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन। आप जिंदगी में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुशियां आपके कदम चूमती रहें। जो अभी आप चाहें, जो भी आपकी जायज ख्वाहिशें हैं वो जरूर मुकम्मल हों। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, बहुत बहुत मुबारक यार। जिसके साथ एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार है, एक दूसरे का जीवन साथी है, उसको और कोई क्या दुआ दे सकता है। ये साथ, ये विश्वास, ये प्यार आपके साथ यूं ही ना रहे। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास होने वाला है या उनको आज के दिन से बहुत उम्मीदें हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट। आप सबके नाम डेडिकेट कर रही हूँ ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए इट हैपेंस हमारे साथ।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यार, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जी हाँ, सुबह की ताजा तरीन बातें हम और आप मिलकर कर रहे हैं एक ताजा तरीन शो के साथ। एंड आई होप कि आज का ये जो शो है, आज की जो बातें हैं वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये बातों का सफर जो है ये यूं ही जारी रहेगा, बेहतरीन गाने भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन यार एक अभी एक बात जो है वो जहन में आई है, और वो ये कि कुछ लोग जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, उन्हें बड़ा मजा आता है हम कुछ भी करें उसमें टांग अड़ाने में, उन्हें बहुत मज़ा आता है। और ऐसे लोगों से आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। और आपको यही नहीं करना है, आपको यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है और उनको फेस करना है। फेस कैसे करना है? उन्हें सिंपली अवॉइड कर देना है, उन्हें इग्नोर कर दीजिए। जब आप उन्हें इग्नोर करेंगे तब वो आपका पीछा छोड़ेंगे, वरना वो ऐसे ही आपको परेशान करते रहेंगे, आपको उकसाते रहेंगे और आप उनकी बातों में फंस कर अपने ही प्लान्स खराब करते रहेंगे। अपने ही प्लान्स खराब करने की जो रीजन है, जो वजह है, वो आप खुद बन जाएंगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM और आइए इस प्यारी सी बात के बाद ऐसे लोगों को इग्नोर करने के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

रीटो प्रस्वानी 1701 AM पर गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आपको आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस सताक्षी के साथ। दोस्तों, रिश्तों में, खासकर रिलेशनशिप में, हम कभी कभी अपने आप को इतना झुका देते हैं कि हमें उठने के लिए औरों के सहारे की जरूरत होती है। आप झुकते जाते हैं और अगला आपको झुकाता जाता है। ऐसा रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक आपको क्या लगता है टिक जाएगा? सिर्फ आपके उस रिश्ते में झुकने से वो रिश्ता टिकने वाला नहीं है, वो रिश्ता बिखरा हुआ ही है, उसको कोई बिखेरेगा भी नहीं। इसलिए ऐसे रिश्ते में कभी भी फंसिए ही मत, अपने आप को मत झुकाइए इतना कि दूसरों को आपको सहारा देना पड़े, आपको उठाना पड़े। रिश्ता वो अच्छा होता है जो आपको अपने बराबर माने, ना कि आपको बार बार जिंदगी में झुकाता रहे और अपना ऊपर उठता रहे। वो रिश्ता जोड़िए जो आपको भी अपनी तरह या शायद खुद से ऊपर माने। सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो सताक्षी के साथ। आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस मेरे साथ।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks attorney, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, आप सताक्षी के साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। हम और आप मिलकर ढेर सारी ऐसी खूबसूरत बातें कर रहे हैं जो जिंदगी के पन्नों को और भी हसीन बना रही हैं, जो जिंदगी को जिंदगी से मिला रही हैं। लेकिन इन बातों पे अभी थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि ये वक्त है गानों की हैट्रिक का। जी हाँ, 3 बैक टू बैक ट्रैक्स आपको सुनवाने जा रही हूँ एंड आई होप कि आप इन ट्रैक्स को एंजॉय करेंगे। सो चलिए, देर किस बात की है, इंतजार किस बात का है, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये पहला गीत गानों की हैट्रिक में, सिर्फ और सिर्फ इट हैपेंस में।

गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ। जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स इट हैपेंस में इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं, और चलिए गानों की हैट्रिक में बिना देर किए सुनते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी 107।

और आपकी बातों पे लगा है अभी थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि ये वक्त है गानों की हैट्रिक का। दो गाने हम ऑलरेडी सुन चुके हैं और आज का तीसरा गाना हमसे क्या कह रहा है, चलिए उसे एंजॉय कीजिए। उसके बाद बहुत सारा पकाने वाली हूँ आपको, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्फानी, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। और गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक आप

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप. आपके साथ है सताक्षी. यार लाइफ में ना, जिंदगी में ना, एक चीज को लेकर बहुत अवेयर रहने की जरूरत है कि आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं. आप बेशक बहुत टैलेंटेड हो, आप बेशक बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है वो उसी फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाती है, वैसे ही आप हो जाते हैं. और अगर आप सैड फील कर रहे हैं और एनर्जी से भरे हुए पॉजिटिव लोगों के बीच आप पहुंच जाते हैं तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है और आप भी पॉजिटिव सोचने लगते हैं. आपको हर निराशा में भी एक आशा, एक उम्मीद दिखने लगती है. इसलिए खुद को पॉजिटिव बनाइए, अपनी संगत को, अपने सर्कल को पॉजिटिव बनाइए ताकि आप जिंदगी में पॉजिटिव और एनर्जेटिक रह सकें, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें, अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकें. कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM. सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जी हाँ इट हैपेंस.

रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, हम सब जिंदगी में लाइफ में हमेशा ऊपर उठना चाहते हैं, कोई भी ऐसा तो नहीं है ना जो नीचे गिरना चाहता है। हम सब जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हैं, बट यू नो व्हाट, जिंदगी में नीचे गिरना भी बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे कि क्यों हमें नीचे गिरा रही हो, तो देखिए जब आप नीचे गिरते हैं इसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है भाई। जब भी आप नीचे गिरते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चलता है कि जब आप उस टॉप पोजीशन पे थे, जब आप ऊपर थे, उस जगह की वैल्यू क्या थी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। और उससे भी बड़ी सीख जब आप नीचे गिरते हैं आपको ये मिलती है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। जब भी आप नीचे गिरते हैं तो जो आपको उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं ना, वही आपके अपने हैं, और जो आपको देखकर हंसते हैं वो पराए हैं। तो जब भी नीचे गिरें तो शांति से अपने आसपास के लोगों को, जिन्हें आप अपने कहते हैं, उन अपनों को ऑब्जर्व करें। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। और एक बार फिर से कहूंगी, नीचे गिरना कभी कभी अच्छा होता है। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर इट हैपेंस सताक्षी के साथ, और चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक।

0: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
1: Bigger, better deal.
2: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश. T's and C's apply.